ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार ले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए

0: की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी उदयपुर, सवेरे के 6:05। आइए करते हैं प्रभु की स्तुति कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हवेली संगीत के इस कीर्तन के माध्यम से प्रभु श्रीनाथ जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें।

समस्त विविधताएं उसे एक अद्वितीय परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है। उसी की लीला में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस एकत्व का बोध ही परम शांति और मोक्ष का मार्ग है।

भक्ति से व्यक्ति ईश्वर और अपने अंतर्मन से जुड़ता है, जो आत्मा को सुकून और जीवन को नया दृष्टिकोण देता है।

ईश्वर की आराधना एक शुद्धिकरण है, एक संस्कार है जिससे अहंकार मिटता है और भगवान के लिए पात्रता जन्म लेती है।

जन्म मृत्यु मोह माया सुख दुख की विषम लहरों में डूबता उतरता जीव एक दीर्घ रोगी के समान है। इस जगत प्रपंच से उद्धार का वेद्य स्वयं भगवान नारायण है और मुक्तिप्रद औषधि है मोक्षदा माँ गंगा, जिनके दर्शन स्पर्श और स्मरण से ही चेतना का शुद्धिकरण होता है।

अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय होता है। सच्चे भावों से भरा जीवन ही वास्तविक सुख का मार्ग है। जहाँ भक्ति है वहाँ कृपा है, जहाँ कृपा है वही सुख है।

लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे 6:40 पर श्री रामचरितमानस खान की 110वीं कड़ी। 6:50 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती में आज। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे सदाबहार नगमे और 7:45 पर सुगम संगीत। सुबह 8:30 पर नमस्कार उदयपुर आप सुनेंगे। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ प्रमुख स्थानीय खबरें आप सुनेंगे। हेल्दी हैबिट्स में बात होगी खुश रहने के लिए छोटी छोटी आदतों पर, और सिटी अपडेट्स होगी शहर में होने वाली एडवेंचर गतिविधियों पर। लिसनर्स कनेक्ट भी होगा। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे यादों के जरोखे से और 11 बजे घोखड़ा राजस्थानी गीतों पर आधारित प्रोग्राम होगा और 11:30 का वक्त रहेगा सुगम संगीत का। मध्याह्न 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 1:05 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, नए स्टार्टअप की कहानी पर आधारित ये प्रोग्राम होगा। जरा सोचिए, मैं डिजिटल इंडिया से आत्मनिर्भरता पर बात होगी, साथ ही बातचीत करेंगे परिवार में संवाद का महत्व और चर्चा होगी विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर, कामकाज की बातें होगी बुजुर्गों की देखभाल के तरीकों पर और 1:45 का वक्त रहेगा विकास चर्चा का। 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, किसान री बात होगी खरीफ फसल, पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर राजस्थानी लोकगीत आप सुनेंगे, साथ ही साथ जानकारी देंगे नीम आधारित उत्पादकों का उपयोग पर।

शाम 5 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज। इसमें विज्ञान और तकनीक पर बातचीत होगी, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ आज का इतिहास, शेयर बाजार और खेल समाचार भी आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 6:40 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी जयपुर से रिले होगी। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार भी आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से। 7 बजे खेती और घर कार्यक्रम आप सुनेंगे।

जिसमें होगी चौपाल रिबात खरीफ की प्रमुख दलहन फसलें और उत्पादन। राजस्थानी गीत आपको सुनवाएंगे, जानकारी देंगे एग्रोमेंट एडवाइजरी और योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 9:15 पर सुगम संगीत, 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत और रात 10 बजे एक बार फिर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:40 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीत सतीश भाटिया का।

बागवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

श्री रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:50। किसान भाई बहन अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला हगले किसान भाई बहना ने नानू भाई रो घणो घणो राम राम सा। जून राणी महीना में किसान भाई खरीफ फसलारी वावणी री तैयारियां शुरू करे है। जटे खरीफ मक्का री अगर आप बात करा तो अण में देरू पाकवा वाली किस्म जो है वंडी वावणी किसान भाई अणी टेम कर सके है। वणु पहला किसान भाई ने खेत में पलेवो कर लेनो चावे। जणु वर्का प्रारंभ वेते ही पहला ही खेत में भली भांति जो है ई मक्का ने स्थापित कर सके और वावणी रे 15 दिन रे बाद एक निराई भी वही जावे। शीघ्र पाकवा वाली मक्का री वावणी जो है अणी टेम किसान भाई बहना ने कर लेनी चावे। खरीफ रा मौसम में मक्का रे वाते खेत री तैयारी रे वाते भूमि में हेरों एक गहरी जुताई और 2-3 जुताई कल्टीवेटर ऊ कर देनी चावे। जुताई रे बाद पाटो लगाई ने खेत ने समतल कर लेनो चावे जणु की नमी सुरक्षित रहे। मक्का री खेती रे वाते दोमट मिट्टी ऊ लेने बलुई दोमट गहरी भारी गठन वाली मिट्टी जो है जणमे की कार्बनिक पदार्थ री मात्रा उचित और जल निकास री पूरी सुविधा वे वह भूमि मक्का री फसल रे वाते हउ मानी जावे। लवणी और क्षारीय मिट्टी जो है मक्का री खेती रे वाते हउ नी रेवे है। खरीफ मक्का री खेती रे वाते परिपक्वता अवधि रे आधार पर अधिक उपज दे वाली बहुत सारी संकर प्रजातियां उपलब्ध है। मक्का री जल्दी पाकवा वाली संकर प्रजातियां जिस तरह की PEHM2, PEHM3, PEHM5, विवेक संकर मक्का 4, ये प्रजातियां 85-95 दिन में पाक जावे और अणा प्रजातियां ने सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्र में उगायो जा सके है। मक्का री पूर्णकालिक परिपक्वता प्रजातियां री अगर आप बात करा तो अणमें पूसा जवाहर संकर मक्का 1, गुजरात आनंद व्हाइट मक्का हाइब्रिड 2 MM9344, पूसा HM9, इम्प्रूव्ड प्रताप मक्का 9, प्रताप कंचन 2, WC236 ई प्रमुख किस्म है। अणी बर्गरी प्रजाति में 100 लेने 110 दिन में जो फसल है वह पाके है और प्रोटीन युक्त मक्का री जटे प्रजातियां री बात करा तो उनमें HQPM1, HQPM4, HQPM5, HQPM7, विवेक QPM9, शक्तिमान 1, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 ई प्रमुख किस्म है। अणा प्रजातियां ने किसान भाई वणा क्षेत्र में बोई सके जटे सिंचाई देने समय पे वावणी वे और फसल काल में वर्षा जो है वह सुनिश्चित वही जावे है। जो किसान भाई मक्का री किस्म में बेबी कॉर्न रे वाते अगर खेती करनो चावे तो बेबी कॉर्न ले पूसा संकर 2, पूसा संकर 3, HM4A, BL42, G5414 ई प्रमुख किस्म है। और पॉपकॉर्न रवाते पर्ल पॉपकॉर्न एवं अंबर पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न रवाते प्रिया और माधुरी जो है वे उन्नत किस्म है। खरीफ मक्का में उचित संख्या 65,000 लेने 78,000 पौधा प्रति हेक्टर प्राप्त करवा रवाते 20-25 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टर ही आवश्यकता वे है। बीज उत्पादन रवाते पंक्तियों पंक्ति और पौधरे बच्चे दूरी 60-75 और 12-15 सेंटीमीटर किसान भाई राख सके और बीज जो है वो 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर वावणी करनी चावे। संकर बीज उत्पादन में संकर प्रजातियां में नर एवं मादारा बीज क्रमशः 2 और 4 पंक्तियां में बोया जावे। सामान्य स्थिति में वावणी हल रे पाछे कुड़ारी 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी है और पंक्तियों पंक्ति री दूरी अगेती किस्मा रेवाते 45 सेंटीमीटर और मध्यम और देरू पाक वाली प्रजातियां में 60 सेंटीमीटर राखनी चावे। पौध पौध री दूरी अगेती किस्मा में 20 सेंटीमीटर और मध्यम और देरू पाक वाली प्रजातियां में 25 सेंटीमीटर ही राखनी चावे। जटे खाद और उर्वरक री बात करा तो मक्का री भरपूर उपज लेवा वाते किसान भाई संतुलित उर्वरक रो प्रयोग उर्वरक री मात्रा मिट्टी रा उपजाऊ

उपन और अन्य प्रबंधन कारका पर देखो निर्भर करे तो किसान भाई बहना ने चाहे कि सबसे पहला अपनी मिट्टी रो परीक्षण करावे और वनडे आधार पर ही अपनी मिट्टी में जनी उर्वरक की जरूरत वे वणी मात्रा में वणी उर्वरक की पूर्ति करनी चाहे। मक्का रे बात देखा तो आमतौर पर 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 75 ग्राम फॉस्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेरी दरों देनो चाहे। नाइट्रोजन री एक चौथाई मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश री पूरी मात्रा वावणी रे पहला खेत में देनी चाहे। यदि मिट्टी में जीवांश पदार्थ री कमी वे तो वावणी लगभग 15-20 दिन पहला 6-8 टन प्रति हेक्टेरी दरों गोबरी खाद प्रयोग में करवाओ। किसान भाई बहना ने मक्का री फसल में 25% नाइट्रोजन री मात्रा कम कर सके है। शेष नाइट्रोजन दो बार में बराबर मात्रा में टॉप ड्रेसिंग रे रूप में प्रयोग करनी चाहे। पहली टॉप ड्रेसिंग जब फसल घुटना तक रे ऊंचाई भई जावे वनी टेम और दूसरी जड़ा निकल वाली टेम खेत में किसान भाई डाल सके। जड़ा क्षेत्र में पाछले साल ऐसा हैदान दिखाई देता वे वन में अंतिम जुताई रे टेम 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेरी दरों मिट्टी में मिले बीज ने बोणो चावे। जटे मक्का री फसल में अगर सिंचाई री बात करा तो मक्का री पौध री प्रारंभिक अवस्था में सिल्किंग दाना पड़वारी अवस्था में पर्याप्त नमी री आवश्यकता वे। अनी टाइम यदि वर्षा नी वे तो किसान भाई सिंचाई करनी चाहे। सिल्किंग रे समय पानी नहीं मिलवाऊ कई की दाना कम बनेगा और वर्षा रे केड़े खेत में जल निकासी रो अच्छो प्रबंधन मेणो चाहे, नहीं तो पौधा जो है वे पीला पड़ जाएगा और मानारी बढ़वार जो है वह रुक सके है। जटे खरपतवार प्रबंधन री अगर आप बात करा तो मक्का री खेती में निरय गुड़ाई रो अधिक महत्व है। अंडे लारे लारे निरय गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण रे लारे जड़ा में ऑक्सीजन रो संचार वे अणु व दूर तक फैलने भोज्य पदार्थ ने एकत्र करने पौधा ने देवे। पहली निरय जमा वो 15-20 दिन रे केड़े करनी चाहे और दूसरी निरय 35-40 दिन रे बाद किसान भाई बहन ने करनी चाहे। जटे खरपतवार नाशीरी अगर आप बात करा तो एट्राजिन 50% WC 1.5-2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणनशील चूर्ण या पचे एलाक्लोर 50 cc 4-5 लीटर 600-800 लीटर पानी में गोल वणई ने वावणी रे दूसरे या तीसरे दिन अंकुरणु पहला उपयोग करे तो खरपतवार नष्ट हो जावे। और दूसरा खरपतवार नाशी एलाक्लोर अगर है तो 50 cc 4-5 लीटर मात्रा री वावणी रे तुरंत बाद अंकुरण रे पूर्व 600-800 लीटर पानी में मिले ने प्रयोग करे या पचे टोप्रामिजोन जो है 33.6% सक्रिय तत्व प्रति एकड़ या पचे टेम्बोट्रियोन 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ वावणी रे 20-30 दिन बाद 500-600 लीटर पानी में मिले ने छिड़काव करे। और यदि मक्का रे बाद आलू री खेती किसान भाई ने करनी है तो एट्रोजिन रो प्रयोग नहीं करे। तो अबार खरीफ फसला में खरीफ मक्का री अगर वावणी में किसान भाई अणी बातारो ध्यान रखेगा तो वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकेगा। और देखो घड़ी री आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो तो चाला सा आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

किसान भाई बहन सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम खेती में आज, ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7 बजने को है। लीजिए अब आप लुत्फ लेंगे सदाबहार नगमों का, और सदाबहार नगमों में पहला ये गीत हमने आपके लिए चुना है, लोफर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कारवां फिल्म का एक गीत आप सुन रहे थे, और अब आपके रेडियो सेट पर हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की एक बार फिर आवाज़ें हैं।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत आप अभी सुन रहे थे। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं अजनबी फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़।

और का मजा लीजिए ए हुजूर।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी
0: हाँ
1: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

बॉबी फिल्म का ये गीत शैलेंद्र और मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे। यह आवाज है शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।

नसीब फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7:45। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस प्रोग्राम में गैर फिल्मी गीत, ये पहला गीत है अनिया डाका और

अनायदा की आवाज़ में आपने सुना ये गीत, और अब सुगम संगीत प्रोग्राम का अगला गैर फिल्मी गीत है राम शंकर की आवाज़ में।

0: जयपुर है। अब आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: शिखर सम्मेलन में

0: आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए

0: का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सही समय व सही दिशा का ज्ञान ना हो तो डूबता सूर्य भी उगता हुआ दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात सही समय पर कही है, क्योंकि ये वो समय है जब हम हमारे श्रोताओं से सीधे मुखातिब होते हैं, लेकर रोज़ाना की सुबह का एक ताज़ा तरीन अंक नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का। तो इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त बीना, और मेरे साथ है
0: भगवती लक्षकार। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के प्रोग्राम पर अगर हम नज़र डालें तो आज है फिट लाइट मंडे।
1: बिल्कुल।
0: और आज विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस है, और साथ ही साथ प्रमुख स्थानीय खबरें आपको देंगे और हेल्दी हैबिट्स में बात करेंगे, खुश रहने के लिए छोटी छोटी आदतें।
1: बिल्कुल, सिटी अपडेट्स का जो हिस्सा होगा वो शहर की हलचलें बताएगा, और हम आज लेकर जाएंगे आपको शहर में होने वाली एडवेंचर गतिविधियों तक। फिर लिसनर्स कनेक्ट होगा, यानी कि हमारे श्रोताओं को हमारा ये आज का अंक या हमारा नमस्कार उदयपुर रोज़ाना कैसा लगता है वो अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के जरिए।
0: तो हमारे व्हाट्सएप
1: नंबर दे दो।
0: हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
1: बिल्कुल, 9462697568 ये हमारा नंबर है, और आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं सुबह 9:10 के आसपास तक।
0: और आज की अगर हम बात करें तो आज है सोमवती अमावस्या।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और अधिक मास की सोमवती अमावस्या, इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास भी खत्म हो रहा है, और इस दिन सूर्यदेव की मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, और ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये दुर्लभ संयोग करीब 100 वर्षों बाद बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये संयोग ईश्वर की भक्ति और पितरों के प्रति कृतज्ञता के लिहाज से बहुत ही अनुकूल माना जाता है।
1: बिल्कुल, आज के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। विवाहित महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और पति के दीर्घायु के लिए व्रत और पूजा आदि करती हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से अभिषेक किया जाता है, और कहीं कहीं पर पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा करने की भी परंपरा है। आज के दिन भगवती भोजन, वस्त्र, फल या अन्य वस्तुओं का दान अच्छा माना जाता है।

0: नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारे मीडियम वेव आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लिग सिटी चैनल, इन दोनों पर एक साथ। भगवती, तुमने शाम देखी है, सांझ, सांझ कैसी होती है?
1: बिल्कुल, डूबता हुआ सूरज और उसकी जो अरुणिमा है वो आपके दिल तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही वो पूरे दिन का अनुभव भी समेटे हुए होती है, है ना। ऐसे ही जीवन की सांझ जब होती है, यानी व्यक्ति जब बुजुर्ग होता है, तब उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए?
1: अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और देखिए, आज हम मना रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी कि दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का संदेश हम यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सहन किए जाने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भेदभाव में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल, 2026 की जो थीम है वो है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, यानी जागरूकता से आगे बढ़कर बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार की रोकथाम को प्रभावी बनाना। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर की, ताकि सरकारें, संस्थाएं और समाज मिलकर बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर सके।
1: हाँ, और अगर हम बात करें आसपास हमारे जो भी बुजुर्ग है, तो हम उनका सम्मान करें, शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ना ना दे, साथ

0: साथ मानसिक रूप से भी हम उनको जो है एक संबल प्रदान करें, यानी कि आप अगर उनको मानसिक रूप से सशक्त नहीं बना सकते हैं या संबल नहीं, तो कम से कम इतना ना करें कि उनको उनकी मानसिक स्थिति को कोई चोट पहुंचे, है ना।
1: एक और पक्ष है यहाँ पर समझने लायक कि जो बुजुर्ग हैं भगवती, उन्हें भी अपने सुरक्षा के लिए या आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, उसे पहले से ही तैयार होकर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन की सांझ हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगी और तब वो बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करना पड़े या किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ऐसी स्थिति में इस तरह के जो शोषण है या दुर्व्यवहार है, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहें, जागरूक रहें। अब तो इतने सारे अधिकार हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं और आपके घर में आपके पुत्र पुत्री वो आपकी नहीं देख रेख करते, तब भी आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनसे इस तरह की बाध्यता ला सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि शुरू से, पहली पीढ़ी से या बचपन से ही बच्चों के अंदर बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान, उनके प्रति एक अच्छी भावना, उनके उनकी सेवा शुश्रूषा की एक आदत डेवलप की जाए, डाली जाए, कि उन्हें पता है कि ये जीवन चक्र सबके जीवन में आना है। तो शायद हमारे यहाँ ये जो जितने वृद्धाश्रम हैं ये सब खुलने ही बंद हो जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों को फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और सहारा ढूंढने की।
0: अगर हम उनके दुर्व्यवहार की अगर बात करें, तो कई बार हम अनजाने में सही चोट उनको पहुंचा देते हैं, अनुचित तरीके से शारीरिक बल भी कई बार कई घरों में जो है हमने देखे हैं, और धमकाना, अपमान करना, जानबूझकर अकेला छोड़ देना, वृद्धजनों को संपत्ति या पैसों का अवैध रूप से उपयोग करना, हड़पना, या उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे दवा हुई, भोजन हुआ और देखभाल हुई, उनको पूरा नहीं करना, ये सारे ही दुर्व्यवहार में गिने जाते हैं।
1: बिल्कुल, और ये अब कानूनी रूप से भी अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो आप चाहें तो जो बुजुर्ग हैं, अगर वो किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, तो वो अपने लिए सहायता मांग सकते हैं,
0: कानूनी सहायता ले सकते हैं।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय जरूर हमें भेजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। और अब हम बात करते हैं, भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए, 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम को एक एक सफलता मिली और 171 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑल आउट हो गई। मुनीबा अली ने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए और श्रीचरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट मिला।
1: भाई क्या बात है, ये जो कल का मैच था ना, ये बहुत देखने लायक मैच था। और एक अच्छी बात बताऊं भगवती, कि पहले महिलाओं का जो क्रिकेट मैच होता था तो पूरा स्टेडियम खाली पड़ा होता था, सिर्फ टीम्स खेलती होती थी। और कल जब हमने देखा तो वाकई में पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और आखिर में कमेंटेटर ने एक बहुत अच्छा एक वाक्य बोला, मैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहती हूँ, कि पहले हम हिस्सा लेने आते थे इस कप में, इस बार हम कप लेने आए हैं। चलिए अब हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। और ये यूएसए, कनाडा और मेक्सिको की मेज़बानी में 48 टीमों के बीच में खेला जा रहा है। तो इसमें जो कल के मैच थे, जिसमें ग्रुप बी में कतर और स्विट्ज़रलैंड का मैच था, ये 1-1 से बराबरी पर रहा। ग्रुप सी में ब्राज़ील और मोरक्को के बीच में भी 1-1 से बराबरी पर मैच ड्रॉ हो गया। ग्रुप सी में हैती और स्कॉटलैंड के बीच में मैच था, जिसमें स्कॉटलैंड ने एक ऐतिहासिक विजय 1 गोल कर हैती पर दर्ज की। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की के बीच में मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल कर विजय प्राप्त की और तुर्की 1 भी गोल नहीं बना पाया। ये ग्रुप डी का मैच था। जर्मनी और कुराकाओ के बीच में एक मैच हुआ कल ग्रुप ई का, जिसमें जर्मनी ने 7 गोल किए और कुराकाओ सिर्फ 1 गोल कर पाया और जर्मनी ग्रुप ई के शीर्ष पर पहुंच गया। आज हुए मुकाबलों में ग्रुप एफ का एक मैच था नीदरलैंड और जापान के बीच में, जो 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर में मैच जारी था और स्थानीय समय सुबह 7:30 पर आज एक मैच शुरू हुआ स्वीडन और टूनीशिया के बीच में, जिसमें अभी टूनीशिया की ओर से 1 गोल और स्वीडन की तरफ से 2 गोल दागे गए हैं हाफ टाइम तक। इसका अभी तक जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें नहीं मिल पाया। और एक मैच और आज होने वाला है, वो होगा स्पेन और काबो वर्दे के बीच में। तो ये था आज का फीफा वर्ल्ड कप अपडेट।

0: आपके जीवन में खुश रहने की बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती है जिससे आप खुश रह सकते हैं और रोज़मर्रा के जो आप व्यस्तता में रहते हैं उसमें भी मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी आदतों में लाने की ज़रूरत होती है। और सकारात्मक आदतों को अगर हम शामिल करें तो जीवन अधिक सुखद भी बनता है, संतुलित भी बनता है और संतोषपूर्ण भी बनता है।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कि आप क्या ऐसा छोटा छोटा उपाय करें कि आप खुश रह सकें। देखो भगवती, खुश रहना कोई एक उपलब्धि नहीं है बल्कि एक छोटा छोटा बातों का रोज़ का अभ्यास होना चाहिए, तभी आप अपने लिए खुशी पा सकते हैं। पहला तो सबसे पहली बात होती है खुश रहने का, मतलब तुम देखोगे कि खुशी कैसे काफूर होती है, कैसे उड़ती है अगर आप खुश हैं। जैसे आपने किसी और से तुलना की अपनी और वो थोड़ा सा 21 हो गया और आप 19 पाए गए तो आपकी खुशी गायब हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है कि अपनी तुलना दूसरों से कम करें। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति अपनी प्रगति पर अलग तरह से ध्यान देता है, तो आप सिर्फ अपने बेटरमेंट पर ध्यान दें। और अपने बेटरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से कुछ लूट खसोट के और अपने घर में भर लें, अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान दें और वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तब आप किसी और से अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। फिर थोड़े एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, 20-25 मिनट आप टहलिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, योग करिए, योग मन और शरीर दोनों को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल, और दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच के साथ करें, है ना। और जब भी आप सकारात्मक सोच के साथ अगर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको चारों तरफ सकारात्मकता दिखाई देगी। और ये ज़रूर करें कि एक गहरी सांस लें, नए दिन के लिए कृतज्ञता भी व्यक्त करें, इससे आपका मन जो है वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। और एक सच्ची मुस्कान न केवल आपके चेहरे पर सुंदरता बढ़ाती है बल्कि आपके मन को हल्का और प्रसन्न भी बनाती है। तो हमेशा जहाँ भी जाइए, किसी से भी मिलिए, आप एक हल्की मुस्कान के साथ मिलिए तो उनको लगेगा कि जो अगले वालों को भी पॉजिटिविटी महसूस होगी।
1: बिल्कुल, सामने वाले को ये लगेगा कि आप उनसे मिलकर खुश हुए हैं। और ये खुशी और मुस्कुराहट बहुत इन्फेक्शियस होती है कि आप खुश हैं और आपने किसी से थोड़ी सी खुशी शेयर की तो वो मीलों लंबे तक वो खुशियों का कारवां बढ़ता चला जाता है।
0: कई बार हम जैसे दूसरों की मदद करते हैं उसमें भी खुशी मिलती है। तो ये मदद के लिए आपको कोई अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी आदत में ले आइए और जहाँ भी लगे आप मदद के लिए तैयार हो जाइए, है ना।
1: और भगवती, ऐसा भी होता है कि खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालें, मतलब खुद के बेटरमेंट के लिए, जो आपकी रुचियां हैं, जैसे अगर आपको संगीत सुनना पसंद है या आपको बागवानी करना पसंद है।

0: तो आप वो सब काम कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नया कुछ कला सीखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ लोग पेपर बोट बनाकर भी बहुत खुश हो जाते हैं बारिश में। तो खुशियों का जो पाने का तरीका है वो आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, आपकी खुशी किसी दूसरे के लिए परेशानी का सबब ना बने और आपके स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट नहीं डाले, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा।
1: साथ ही साथ आपको पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है भागा दौड़ी की ज़िंदगी है और हम नींद को अक्सर भूल जाते हैं, या यूं कहें कि हम उसको एक तरीके से उपेक्षा कर देते हैं उस नींद की। तो वो नहीं करना है, आपको बराबर नींद लेनी है और ये नींद लेना जो है आपकी आदत में लाना है। अगर आप आदत में लाएंगे तो सब ओर से प्रसन्नचित भी आप रहेंगे। साथ
0: एक
1: ही
0: और बात कह सकते हैं अपन कि आप अगर बहुत चिड़चिड़ा सा फील कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये आपकी मानसिक कोई समस्या हो, हो सकता है आपके हार्मोन्स आपको परेशान कर रहे हो। तो ऐसे में आपको चिकित्सक से भी सलाह ले लेनी चाहिए कि भाई मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ या मुझे आजकल इस तरह की परेशानी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे खुश खुद से ही खुश हो जाएं, हो सकता है कभी कभी हमारे शारीरिक जो बदलाव होते हैं वो भी हार्मोन्स जो हमारे होते हैं ये हमें परेशान करते हैं, और हम इसको अगर ठीक से ट्रीटमेंट लें तो हम उसको लेवल करके बैलेंस करके एक अलग सी खुशी वो भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यानी कि हम कुल मिलाकर यही कहने चाहते हैं कि खुश रहने की छोटी छोटी आदतें हैं जो हमने बताई है, और भी बहुत सारी आदतें आपको ध्यान में होगी, तो हमें ज़रूर लिखिए 9462697568 पर।
0: ये हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: नमस्कार, उदयपुर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो जुड़ते हैं जयपुर अजमेर से।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले

जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। श्री ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। होर्मुज से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और

0: स्टार्टअप, इनोवेटर, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद हैं। जयपुर में कल कृषि और सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी की जांच के आधार पर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही उर्वरकों का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए ताकि किसानों की वास्तविक जरूरत का सटीक पता चल सके। बैठक के दौरान उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में खाद की निर्बाध आपूर्ति का पूरा भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षकों को गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 700 सी मार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। इन सी मार्ट को अच्छी व्यापारिक संभावनाओं वाले स्थानों पर खोला जाएगा ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सके। बैठक में महिला उद्यमों को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण विकास सचिव ने योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लखपति दीदी, सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसी श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे देश के मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना के साथ मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर के विकास, स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में कचरा संग्रहण, परिवहन और इसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मॉनसून सीजन को देखते हुए जयपुर में जलभराव रोकने और नालों की सफाई के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और बारिश का दौर जारी रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रविवार को जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और टोंक सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दौसा और चित्तौड़गढ़ में तेज अंधड़ से पेड़ गिरने के समाचार हैं। और ब्यौरा हमारे जयपुर संवाददाता से।
2: बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा 44 मिलीमीटर जयपुर के चौमू में दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। फलौदी 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं सिरोही में सबसे कम 22.8

0: 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज रूम से मैं जयकिशन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: हनुमानगढ़ में आज सुबह तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। जिले में हुई बारिश से किसान नरमा, कपास और धान की फसल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पाली जिले में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय सांसद पीपी चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कम प्रीमियम वाली छोटी बीमा योजनाएं शुरू कर आम जन को बड़ी राहत दी है।
2: गरीबों की बात करें तो उनके लिए विभिन्न तरह की जो योजनाएं, बीमा योजना लेके आए हैं, जो 12 रुपए की भी है, 424 रुपए की भी है, इस तरह से छोटी छोटी अमाउंट की बीमा योजना ला कर करके उनके घरों में एक सुरक्षा प्रदान की है फाइनेंशियल। और उसके साथ साथ आज देखेंगे विश्व में भारत जो है आज एक नंबर पे है इस मामले में खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को देने, और आने वाले टाइम में 2029 तक 5 करोड़ घर देने का टारगेट, और यही नहीं पानी के लिए हर घर नल के द्वारा पानी, इसके लिए करीब 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हुआ। देश भर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 700 शीमार्ट और 1000 जिला आपूर्ति केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने को कहा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में आंधी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत, चौमू में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: नमस्कार, उदयपुर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार।
4: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी बीना।
3: और अब बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती हम मना रहे हैं, और शहर और आसपास मेवाड़ में बहुत सी गतिविधियां हो रही है, बहुत से आयोजन हो रहे हैं जिसमें लोगों की जन सहभागिता भी बनी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शहर और हल्दीघाटी क्षेत्र रविवार को श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा गया। शिवदल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ऐतिहासिक 26 फीट नाले पर पहुंचे और जहां चेतक के अद्वितीय बलिदान और स्वामी भक्ति को याद करते हुए शिला पूजन, दीप प्रज्वलन और आरती की गई।
4: बिल्कुल ऐसे ही चेतक सर्कल पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान और नगर निगम के संयुक्त मेजबानी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेतक अश्व पूजन, महाराणा प्रताप की महाआरती, मातृशक्ति द्वारा शौर्य तलवार रास, स्केटिंग पर देशभक्ति नृत्य, अखाड़ों के पहलवानों के हैरत अंगेज प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। इन दोनों आयोजनों के माध्यम से महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।
3: ऐसा ही आयोजन हुआ वार्ड 40 आकाशवाणी कॉलोनी में, जहां 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं और वहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महादेव का जो है दुग्धाभिषेक किया गया। मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक उनका हुआ और आयोजन में बहुत से लोगों ने भाग लिया।
4: बिल्कुल, अभिषेक के दौरान सर्व समाज के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य, सुख और शांति बनाए रखने की कामना की।
3: साथ ही साथ अगर अलग से खबरों की बात करें तो बहुत सारी खबरें और भी है, और उन खबरों में एक खबर ये भी शामिल है कि जो प्रदेश के सरकारी स्कूल है वहाँ शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीटीआई की कमी जल्द दूर होने वाली है। खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 900 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है।

श्रोताओं, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि थोड़ी ही देर में लिसनर्स कनेक्ट होने वाला है, तो आप अपने व्हाट्सएप से हमें कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 9462697568।

0: चलिए, दिन चढ़ता हो या ढलता हो, उदयपुर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपको निश्चित रूप से सुकून देगी और आपको खुश कर देगी। और उदयपुर अपनी शांत झीलों और महलों के अलावा शानदार एडवेंचर गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास की जो अरावली पहाड़ियां हैं, जो झीलें हैं और जो आसपास का वन क्षेत्र है, बहुत सारी एडवेंचरस गतिविधियों को बनाता है, उनको आयोजित करता है। जिसमें एक गतिविधि है पैरा मोटरिंग, जिसमें अरावली पहाड़ियों और झीलों का बर्ड आई व्यू देखने का शानदार अनुभव लिया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा समय सुबह सुबह या शाम को होता है और इसकी अवधि 10 से 25 मिनट की है कि ये आपको पैरामोटरिंग करने मिलती है।
0: एक और गतिविधि है जिप लाइनिंग, और ये आप अरावली पहाड़ियाँ या घाटियों के ऊपर से उड़ने और बर्ड्स आई व्यू देखने के लिए एक बेहतरीन गतिविधि है। और इसके जरिए आपने देखा होगा फूलों की जो घाटी है या चिरवा घाटी है, वहाँ पर भी आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो आप कुंभलगढ़ अभयारण्य अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका पूरा लुत्फ आप ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, एक जिपलाइन हमारे पास में ही चीरवा के आगे जो तलाई है उसमें स्थित एडवेंचर जो बायोडायवर्सिटी पार्क है वहाँ पर भी एक जिपलाइन मौजूद है। साथ ही चीरवा घाटा पर तो आपने बता ही दी, दूध तलाई पर भी एक जिपलाइन बनी है अभी, जिसमें आप दूध तलाई को पूरा क्रॉस करते हैं जिपलाइन से। और ऐसे ही एक जिपलाइन है फतेहगढ़ में, फतेह कलेक्शन के द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह से बहुत सारी जिपलाइन है जहाँ पर आप छोटा मोटा एडवेंचर कर सकते हैं। फिर ट्रैकिंग की एक सुविधा हमारे आसपास है।
0: और उनमें शामिल है उबेश्वर जी, नीमच माता मंदिर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के कई ऐसे पहाड़ है जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं।

0: आप करणी माता जाकर सनसेट और सनराइज़ का मज़ा ले सकते हैं, बड़ी झील पर जाकर भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, और सुबह 5:30 से 7:30 बजे का समय गर्मियों में बहुत मुफीद रहता है यहाँ पर जाने
1: अगर
0: के
1: आप
0: लिए।
1: ट्रैकिंग करते हुए बड़ी जो है आप बाहुबली हिल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा, और वहाँ से अगर आप फोटोग्राफी भी करेंगे तो आपको इतना जो है हटकर
0: बिल्कुल।
1: दिखाने वाली
0: अभी
1: है।
0: एक नया ट्रैक सज्जनगढ़ के बैक साइड में भी चला है, जहाँ पर जाने के लिए आपको आसपास के किसी गांव तक पहुँचना होता है और वहाँ से वो ट्रैकिंग होती है। फिर कयाकिंग और बोटिंग, क्योंकि हम झीलों की नगरी में रहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवेंचर का साधन है, जहाँ पर आप कयाक में कर सकते हैं, पैडल बोट में जा सकते हैं या सनसेट बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं। रोप वे भी है भगवती हमारे यहाँ पर, क्योंकि रोप वे वैसे तो पहाड़ चढ़ने के लिए काम लिया जाता है, लेकिन वो भी एक एडवेंचर से भरपूर एक चीज़ होती है जिसमें शहर का पेनोरामिक व्यू मिलता है। तो करणी माता रोप वे हो गया, अभी हमारे यहाँ नीमच माता का भी रोप वे बना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको बहुत एन्जॉयमेंट मिलता है उसको यूज़ करने पर। साथ ही जीप सफारी और अरावली ऑफ रोडिंग, ये भी एक एडवेंचर का जरिया है, जहाँ पर ग्रामीण इलाकों, पहाड़ियों और जंगल के ट्रेल्स का अनुभव मिलता है। कई स्थानीय ऑपरेटर ये सुविधा देते हैं।
1: एडवेंचर के अगर शौकीन हैं आप तो एटीवी राइड और गो कार्टिंग, ये इसका भी आप आनंद ले सकते हैं दूतलाई पर, और शहर के विभिन्न एडवेंचर पार्कों में भी आप ऑफ रोड एटीवी राइड्स का लुत्फ़ ले सकते हैं। अगर हम झाड़ोल की तरफ जाएँ तो सांडोल माता पर भी कई एडवेंचर गतिविधियाँ जो है होती है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: वहाँ पर भी
1: उसमें
0: एक जिप लाइन है सांडोल माता पर भी, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे एडवेंचर पार्क्स और आउटडोर गेम्स उपलब्ध हैं, जहाँ पर आर्चरी आप कर सकते हैं, एयर गन टारगेट शूटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ पर आप जाकर एक, जैसे हमने जिप लाइन का जिक्र किया था ना भगवती, वैसे ही जो बायोडायवर्सिटी पार्क है हमारा, जो चीरवा के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर और भी छोटे छोटे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप ऐसे कहीं पर रस्सियों पर चल रहे हैं या टायरों के बीच में से होकर जा रहे हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
1: वहाँ पर जंपिंग भी है, और अगर
0: हाँ
1: आप जंपिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो पास ही नाथद्वारा भी जा सकते हैं, वहाँ स्टेचू ऑफ बिलीफ के पास आपको सबसे ऊंची बंजी जंपिंग
0: बंजी
1: मिलेगी,
0: जंपिंग
1: और
0: है
1: जॉइंट स्विंग की सुविधा भी आपके लिए वहाँ मौजूद है।
0: बिल्कुल। और अब तो हमारे यहाँ सफारी भी खुल गया है, वो भी एक तरह का एडवेंचर ही है।

0: भाई भगवती, हम अगर घड़ी की तरफ देखें तो थोड़ी देर बाद हमारे जाने का वक्त हो जाएगा, और ये समय है हमारे लिसनर्स को कनेक्ट करने का हमसे, और हमारे कुछ लिसनर्स ने अपने मैसेजेस के ज़रिए हमसे ये राबता कायम किया है। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है वो किरण कुमावत का है। ये रोज़ाना सुबह सुबह हमें एक मैसेज भेजती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बहुत ध्यान लगाकर हमारा प्रोग्राम सुनती हैं। इन्होंने बोला है कि भगवती सर और विद्या मैडम, तो कोई बात नहीं, ये विद्या जी चलेंगी, हम तो बीना जी हैं। मैं टेकरी लिंक रोड से किरण कुमावत बोल रही हूँ। नमस्कार उदयपुर, ये जो प्रोग्राम है हम रोज़ाना सुनते हैं और हमको बहुत पसंद आता है। आज आपने जो जो भी जानकारी दी वो सब हमने बहुत अच्छी लगी। आज आपने बुज़ुर्गों के लिए जो भी जानकारी दी वो अच्छी थी। सही है सर जी, बुज़ुर्गों का है, साथ ही फीफा वर्ल्ड कप और वुमेन क्रिकेट 2026 की जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद किरण जी, आपने एक एक टॉपिक को ध्यान से सुना और फिर अपनी राय जाहिर की है।
1: ये एक मैसेज है कमल कुमार सुहाल का, कौशल्या सुहाल का, धारावती सुहाल का, बालकृष्ण सुहाल का आनंद विहार सेक्टर 4 से। ये लिखते हैं कि आज हम आकाशवाणी उदयपुर से महत्वपूर्ण संदेश ये देना चाहते हैं कि सभी को वृद्ध जनों की सेवा का प्रण लेना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए, भोजन की समुचित व्यवस्था करें। और भगवती लक्ष्कार और बीना जी का कहना है कि सभी युवा वर्ग भी वृद्ध अवस्था में आएंगे। मैच के बारे में जानकारी दी वो हमें बहुत ही अच्छी लगी।
0: इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि पर्यटक भी हमारे उदयपुर को देखने, संस्कृति को पहचानने जानने के लिए आते हैं। हमारा उदयपुर बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। खुशियों के लिए भी इन्होंने लिखा कि खुशियां आपस में बात करने करके भी बांट सकते हैं। अच्छी जगह पर्यटन पर जाएं, समूह में जाएं, सज्जनगढ़ जयसमंद जाएं तो सब तरह का ध्यान भी रखें, पानी के पास गहराई में स्नान ना करने जाएं, और खुशियों को गा कर डांस करके भी बांटा जा सकता है, इन्होंने ये लिखा है।
1: ये दूसरा मैसेज मेरे पास है घोटीपा भिंडर से रुपेश का। ये लिखते हैं कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और क्रिकेट और फीफा की जानकारी आपने दी वो बहुत ही बढ़िया लगी, और आपका कार्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही अच्छा है।
0: एक 9 साल के हमारे श्रोता है देवर्ष खत्री, जो जयश्री कॉलोनी में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि महाराणा प्रताप के बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी थी। आज हमने उनके बारे में जो भी उनके जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम हो रहे वो हमारे श्रोताओं से साझा किए थे, और हम हमारे श्रोताओं को कहेंगे कि हम हर सोमवार को ये लिसनर्स कनेक्ट रखते हैं, तो आप अपने विचार, कार्यक्रम के बारे में सुझाव भी आप हमसे साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबरों के ज़रिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462695968। आई थिंक यही है,
1: मैं भी नहीं, शायद 9462697568।
0: बिल्कुल, तो 9462697568 हमारे नंबर है श्रोताओं, और आप हमारे इस नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और अब हम एक गीत के साथ हमारे श्रोताओं को छोड़ जाते हैं, आज के लिए लेते हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से विदा। हम फिर मिलेंगे,
1: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार। उदयपुर अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम को जय हिंद, आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत

0: बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
1: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान था, कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर नौ दो ग्यारह हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर

0: उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं, फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेद ने सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे! ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो...
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुना।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
1: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पू!
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
7: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
7: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।

0: मास्टर जी।
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
0: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला,
0: वो कंचा।
1: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते

0: जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 150

0: अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: एक रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने

0: दुकानदार समझ गया, वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
1: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
1: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
1: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
1: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
3: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
3: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
4: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए यादों के झरोखे से। आज हमने यादों के झरोखे से दो फिल्में चुनी हैं आपके लिए। पहली फिल्म है 1981 में आई याराना और दूसरी फिल्म है 1984 में आई शराबी। तो शुरुआत याराना से।

श्रोता, 1981 में रिलीज हुई याराना भारतीय सिनेमा के इतिहास में सच्ची दोस्ती और शानदार म्यूजिक अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक बल्ब वाले सूट के लिए हमेशा याद की जाती है। राकेश कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई।

श्रोताओं, ये फिल्म किशन और बिशन यानी कि किशन अमिताभ बच्चन और बिशन अमजद खान की अटूट दोस्ती की कहानी है। एक अनाथ और सीधे साधे गांव के लड़के किशन की सुरीली आवाज़ पहचानकर उसका अमीर दोस्त बिशन उसे शहर ले जाता है और एक मशहूर सिंगर बना देता है। संगीतकार राजेश रोशन के बनाए इस फिल्म के सभी गाने ब्लॉकबस्टर रहे हैं और किशोर कुमार की आवाज़ में तेरे जैसा यार कहाँ छू कर मेरे मन को और बिशन की मम्मी आज भी लोगों की जबान पर है।

श्रोतम, फिल्म की शूटिंग के दौरान अमजद खान का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था और अमिताभ बच्चन ने खुद अस्पताल में उनके लिए खून का इंतजाम किया था, जिससे असल जिंदगी में भी उनका याराना अमर हो गया।

गब्बर सिंह के रूप में मशहूर अमजद खान ने इस फिल्म में एक ही भावुक और सकारात्मक दोस्त का किरदार निभाया था, जो अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत खास बनाता है। फिल्म के गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना में अमिताभ ने जो लाइट से झड़ा हुआ सूट पहना, उसे आज भी बॉलीवुड का सबसे यादगार और ट्रेंडी कॉस्ट्यूम माना जाता है। और सारा जमाना गाने के लिए अमिताभ बच्चन का बल्ब वाला सूट कोलकाता के एक बिजली मिस्त्री ने तैयार किया था, और शूटिंग के दौरान अमिताभ को करंट लगने का डर था, इसलिए बैटरी छुपाकर डांस किया। इस फिल्म का ये जो मशहूर गाना है वो कोलकाता के नवनिर्मित नेताजी इंडोरी स्टेडियम में शूट किया गया था, और वहाँ अमिताभ को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि सुरक्षा संभालना मुश्किल हो गया था।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
6: चले
7: ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: औषधों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं 1984 में आई फिल्म शराबी के गीत। यादों में 1984 की शराबी फिल्म प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म आर्थर से प्रेरित थी और ये सबसे बेहतरीन संगीत, शानदार डायलॉग्स और अमिताभ के सिग्नेचर स्टाइल के लिए आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। तो शुरू करते हैं इस फिल्म का सफर यादों के साथ।

श्रोताओं, फिल्म में अमिताभ बच्चन यानी कि विक्की कपूर के बाएं हाथ को हमेशा जेब में रखने का स्टाइल बहुत फेमस हुआ था। असल में शूटिंग से ठीक पहले दिवाली के पटाखे से उनका बाएं हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और यही वजह थी कि उन्होंने पूरी फिल्म में शूटिंग के दौरान अपना हाथ जेब में रखा था, लेकिन ये युवाओं के लिए स्टाइल बन गया।

एक शराबी की चाल ढाल और बोलने के लहजे को पर्दे पर उतारने के लिए अमिताभ ने विशेष रूप से संवादों को धीमे और नपे तुले तरीके से बोलने का तरीका अपनाया था। बप्पी लहरी के संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने फिल्म में जान फूंक दी।

फिल्म शराबी के बारे में बात करते ही जहन में विक्की कपूर को बेपरवाह अंदाज और दर्द भरे डायलॉग्स ताज़ा हो जाते हैं। और प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिर्फ एक शराबी की कहानी नहीं थी, बल्कि अमीर लेकिन अकेले बेटे के अकेलेपन और सच्चे प्यार की तलाश की दास्तां भी थी। और इसमें अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन और दिग्गज अभिनेता प्राण की जोड़ी की यह एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इससे पहले दोनों ने जंजीर, डॉन और मजबूर जैसी फिल्में एक साथ की थी। और इसमें जो फिल्म में मुकरी साहब ने नत्थूलाल का किरदार निभाया था और अमिताभ बच्चन का उन पर बोला गया डायलॉग मुझे हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो, आज भी एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होती है। और अमिताभ बच्चन ने शराब के नशे में गंभीर बातें करने के साथ साथ अमिताभ ने फिल्म में बेहतरीन कॉमेडी भी की। और कोर्टरूम का सीन हो या मुकरी साहब के साथ मूछों वाली बातचीत, उनको सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था।

भावनात्मक दृश्यों की बात करें तो ओम प्रकाश और अमिताभ बच्चन के बीच का रिश्ता और अंत में प्राण का किरदार फिल्म में गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो ये थी आज की फिल्म शराबी, और इससे पहले हमने बात की थी याराना पर। अब यादों के झरोखे से इस प्रोग्राम से दीजिए आपके दोस्त भगवती लक्षकार को अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 11 बज चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं राजस्थान की मिट्टी की खुशबू से सराबोर राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम कुखड़ा।

श्रोता फोन्ड्याहो आफ्नो मनपसन्द कार्यक्रम जिथे गुन्जे राजस्थान री माटी री महक अनि लोक संस्कृति संस्कृति र सुर राजस्थान री धरती वीरा री धरती है अनि धरती रो लोक संगीत दुनिया भर में आपने अलग पहचान राखे इन गीता में प्रेम री मिठास विरह री पीर अने उत्सव नी रौनक साफ चल के साथो साथियों आज हमें ले चला थाने राजस्थानी लोकगीत री रंग बिरंगी दुनिया में जिन री मधुर धुन अने प्यारा बोल थानो मन मोह लेंगे तो फिर देर किस बात री लो लीजो आनंद आज रोए सुरीला राजस्थानी गीत रो

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
2: और ये
1: मेरी गुड़िया की ना। दादी
0: हाँ
1: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: केवीसा की भिंडी मारे राजस्थान री शान वेसा, जद भिंडड़ी ससुराल जावे तो घर आंगन खुशियां सुम भर जावे सा। इन गीत में भिंडी ली सुंदरता उन री लाज शर्म अंडे परिवार रो प्रेम बड़ो ही सुंदर ढंग सु पिरो गयो थो। तो आओ सा इन मधुर गीता री सोर सु खो जावा अंडे हूं राजस्थान रो अगलो गीत।

शताबारी एक घणो ही जोशीलो अने लोक रंग सु भरपूर राजस्थान गीत झांझर री। राजस्थान री लोक संस्कृति में झांझर री झनकार खुशिया नाच गणो अने उत्सव री पहचान मानी जावे सा। जद झांझर रा सुर गूंजे तो मन आपोआप थिरकण लागे जाए। ये गीत भी प्रेम उमंग अने राजस्थान री सौंधी माटी री महक सु भरपूर है। तो साथियों थारो मन भी तैयार कर लो अने डूब जाओ इन मधुर सुरा में।

चदा माहौल ने और भी रंगीन बनावा रूप समाये। जो है तैयार हो जाओ क्योंकि अब आप एकदम धमाए के राजस्थान गीत मैं तो गीत खुशिया उत्साह ने मस्ती सुभरपुर है जदे गीत सुर बचे तो आप ठीक चाहे चाहे शादी ब्याह हो चाहे कोई त्योहार हो या कोई पारिवारिक समारोह गीत हर मौके में यादगार बना ले सकते। तो साथी मुस्कुराइए ने मन ने झूमन दीजिए तैयार हो जाओ इस शानदार गीत रो आनंद लेवा खाते।

अरे केसो राजस्थानी गीत री जिको नाम सुनते ही घूमर री रंगत अने बीनरी री अदा याद आई जावे सा। मणि घूमर गाले सा एक घणो ही प्यारो गीत है जेमा बीनरी री शोभा अने राजस्थान री रीति रिवाज अने लोक संस्कृति री सुंदर झलक देखन में मिले है सा। ये गीत रा सुर सुनते ही मन झूम उठे अंडे लागे जुनो की रंग बिरंगी ओनी लहरावे सा इन पायल छनकावे अंडे आंगन में घूमर रे महफिल सज गई है।

तुम्हारा प्यारा श्रोतागण आज रोजो रंग बिरंगो संगीत में सफर बस यहीं तक। उम्मीद करा कि आज रूपेश किए गए राजस्थानी गीतों और गुलदस्तों थाने खूब भाव्य होगा। मेरा प्यार अपनापन अने साथ ही माने हर बार कुछ नए लेने प्रेरणा देवी सा आपदा कार्यक्रम में फिर एक बार राजस्थानी लोक संस्कृति अने सुरारी मिठास लेने हाजिर हो सा। तो इजाजत दीजो मोनिका भाई सा ने तो चाला सा राम राम सा।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे कुकड़ा कार्यक्रम मीडियम वेव 286.66 मीटर यानी कि 125 किलोहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 11:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

कहते हैं कि सुगम संगीत यानी ऐसे मधुर गीत जो अपने सरल बोल, सुरीले संगीत और भावपूर्ण प्रस्तुति से सीधे दिल को छू जाते हैं। इन गीतों में प्रेम, जीवन, उम्मीदें, यादें और रिश्तों के अनगिनत रंग समाये होते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर होकर सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा मधुर गीत जो आपके मन को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सुरीले गीतों का यह खूबसूरत सफर अभी जारी है।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया किडबैग चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।

0: को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किडबैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है,
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: रफ्ता रफ्ता
7: सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक ही, आकाशवाणी उदयपुर है। कुछ पहले मैं आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत लेकर आई हूँ आपके साथ आपकी डियर दोस्त मोनिका। कहते हैं कि हिंदी सिनेमा के सदाबहार और दिल के छू जाने वाले गीतों का सफर हमेशा यादगार रहता है। कभी कभी प्यार की मीठी खुशबू, कभी जुदाई का दर्द, तो कभी खुशी और उत्साह के रंग, हर एहसास को फिल्मी गीतों ने खूबसूरती से बयां किया है। तो अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सुनेंगे ऐसे ही चुनिंदा मधुर और सदाबहार नगमे, जो आपके दिल को सुकून देंगे और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर देंगे। तो तैयार हो जाइए संगीत के इस खूबसूरत सफर के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहले सुरीले गीत के साथ।

कभी कभी दिल की बातें शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बयां होती हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं तो हर धड़कन एक नई कहानी कहने लगती है। ऐसा ही खूबसूरत एहसास लिए हुए हैं ये अगला गीत। फिल्म क्या दिल ने कहा, यह एक मधुर रोमांटिक गीत प्यार की मासूमियत और अपनापन और दिल की अनकही भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। मधुर संगीत और दिल को छू जाने वाले बोल इस गीत को हमेशा यादगार बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यार की इन मीठी धड़कनों को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म क्या दिल ने कहा का शीर्षक गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि
5: लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: श्रोता कहते हैं कि पहली नजर का प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। किसी की एक खूबसूरत, किसी की एक मुस्कान, किसी का एक नज़र दिल की धड़कनों को नया अंदाज दे जाती है। पेश एक ऐसा रोमांटिक गीत जिसमें पहली मुलाकात की मासूमियत और दिल की हलचल प्यार की मीठी शुरुआत को बेहद खूबसूरती से पिरो गया है। तो अपनी यादों को ताज़ा कीजिए और इस प्यारे से नगमे का आनंद लीजिए।

श्रद्धा कहते हैं कि प्यार में कभी शरारत होती है, तो कभी नटखट अंदाज, तो कभी मीठी सी छेड़छाड़। ऐसे ही हल्के फुल्के रोमांस और मस्ती से सजा है ये हमारा अगला गीत। इस गीत में प्यार की मासूम अदाएं, दिल की धड़कनों का उत्साह और खूबसूरत संगीत का ऐसा संगम है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो देर किस बात की है, ये सुनते हैं सुरीले और चुटपुले अंदाज का आनंद लेते हैं और सुनते हैं अगला गीत। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि

0: होगा, बोलो बोलो तो क्या होगा।
1: तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा
0: तो क्या होगा, बोलो बोलो तो क्या होगा।

कहते हैं कि जिंदगी में कुछ को मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हर पल को खास बना देती हैं। किसी अपने का साथ मिले तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है और हम हर सफर आसान। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को बहुत मधुर अंदाज में बयां करता है हमारा ये अगला गीत। प्यार, अपनापन और दिल की धड़कनों से सजा ये नगमा आज के दौर के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में शामिल है। तो अपने दिल की धड़कनों को इस सुरीले संगीत के साथ महसूस कीजिए और सुनिए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ये खूबसूरत गीत।

श्रोता कहते हैं कि रिश्तों में प्यार के साथ अगर थोड़ी भी नोकझोंक शरारत भी हो तो हर पल यादगार बन जाता है। हमारा अगला गीत भी इसी प्यारे एहसास को बड़े ही चुलबुले अंदाज में पेश करता है। इसकी मधुर धुन, खिलखिलाते बोल और दिलकश अंदाज उसे आज भी उतना ही पसंदीदा बनाते हैं। तो अगर आप भी मुस्कुराते हुए संगीत का आनंद देना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए इस सदाबहार नगमे के लिए। पेश है फिल्म रिश्ता कागज का खूबसूरत गीत और बोल है सजना सुन सुन मेरी चाबी झुनझुन।

0: कहते हैं कि जब मौसम में बाहर हो फूलों की खुशबू बिखरी हो तो दिल में प्यार का एहसास जाग उठता है, तो हर पल किसी खूबसूरत गीत जैसा लगने लगता है और हमारा अगला गीत भी इसी प्यार, ताजगी और रोमांच से रंगों से सजा हुआ है। मधुर संगीत, दिल को छू जाने वाले बोल और शानदार गायकी से सजा यह गीत बरसों से श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। यह गीत सुनते ही मन भी बहारों की तरह खिल उठता है, तो आइए सुनते हैं प्यार और संगीत के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म आराधना का सदाबहार गीत।
1: तुम्हारी आंटी कितनी अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है।
2: और जब मैं देखती हूँ?
1: अरे होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती छुट्टी।
2: अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर?
1: अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। अबे प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं पागल।
2: आप भी होने वाले हैं शायद।
1: हाँ हो जा, अगर तुम मुझसे प्यार न करती।
2: ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
1: व्हाट, अभी तक नहीं कहा?
2: जी नहीं।
1: तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस कहो।
2: नहीं,
1: मैं भी कलवा के छोड़ूंगा।
2: कभी नहीं।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निहार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना।

श्रोता कहते हैं कि पायल की छनक हो या कंगन की खनक हो, दिल में प्यार की हल्की सी दस्तक हो, ऐसे ही प्यारे एहसासों से सजा है हमारा अगला गीत। इसकी मधुर धुन और चुलबुले बोल सुनते ही मन झूम उठता है। यह गीत प्यार, अपनापन और रिश्तों की खूबसूरत मिठास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है। अगर आपको रोमांटिक और मधुर गीत पसंद है तो यह नगमा निश्चित ही आपके दिल को छू जाएगा। तो आइए बिना किसी इंतजार के सुनते हैं ये गीत।

श्रद्धा कहते हैं कि आंखें अक्सर वो बात कह देती हैं जो लफ्जों से कहना मुश्किल होता है। प्यार का इजहार हो या दिल की कोई अनकही बात, नजरें सब कुछ बयां कर देती हैं। हमारा अगला गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बहुत मधुर अंदाज में पेश करता है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के दिलकश आवाजों में सजा या सदाबहार नगमा आज भी श्रोताओं के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

शुदा कहते हैं कि सच्चा प्यार दौलत या सुविधाओं का मोहताज नहीं होता। जब दो दिल एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करते हैं तो छोटी सी दुनिया भी जन्नत जैसी लगने लगती है। हमारा अगला गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही प्यारे अंदाज में बयां करता है। इस गीत में प्रेम, अपनापन और जीवन की सादगी को बहुत ही दिल छू जाने वाले शब्द

श्रोता भवन संगीत कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, दोपहर के 1 बजने को है। समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार

0: भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसुआ में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्वा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान कर समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया जिससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। समय दोपहर के 1:05 हो चुका है। थोड़ी ही देर में महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: भाव मिलते हैं, मीठे शब्दों की हो पहचान, बढ़ता इससे प्रेम और सम्मान। चुप्पी जब दूरी बढ़ाती है, संवाद राह दिखाती है, बातों से हर भ्रम मिट जाता, जीवन में विश्वास जगाता। संवाद है जीवन का सार, इससे बनता सुंदर संसार। तो सखियों, आपसे संवाद करने के लिए मैं हाजिर हूँ आज के महिला जगत कार्यक्रम में, आपकी रेडियो सखी देवबाला सोनी। स्वीकारिए मेरा नमस्कार।
1: शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है, शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। सुश्रोता सखियों, स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा स्नेहिल नमस्कार डॉक्टर रेखा जैन का। और कैसी हैं श्रोता सखियों, मुझे लगता है कि

0: वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। और ऐसा तुमने देखा है कि कई बार जैसे परिवार में कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं किसी की गलती नहीं होती है और वो बड़े जब उनका पक्ष नहीं लेते हैं, पक्ष नहीं मतलब चुप रहते हैं।
1: चुप रहते
0: और
1: हैं
0: इसका
1: बस।
0: सबसे बड़ा उदाहरण मैं तुमको

0: वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। और ऐसा तुमने देखा है कि कई बार जैसे परिवार में कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं किसी की गलती नहीं होती है और वो बड़े जब उनका पक्ष नहीं लेते हैं, पक्ष नहीं मतलब चुप रहते हैं।
1: चुप रहते
0: और
1: हैं
0: इसका
1: बस।
0: सबसे बड़ा उदाहरण मैं तुमको बताऊं, महाभारत देखी है तुमने? जब तुमको पता है ना कि जो द्रौपदी है उनका चीरहरण के समय जब इतने बड़े बड़े धुरंधर चुप बैठे थे, तो सोचिए महाभारत उसी वजह से हुआ
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: कि समय पर नहीं बोलना, संवाद
0: हाँ,
1: नहीं
0: संवाद मतलब जब
1: करना।
0: जहां जरूरत थी उनके बोलने की, यदि वो कहते तो शायद महाभारत होता ही नहीं है ना। छोटों
1: बिल्कुल
0: को समझाते,

0: मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो सीधा सा कारण है संवाद की कमी अपने परिवार वालों से।
1: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे तुमने सच बात बोली है कि इस तरह की सिचुएशंस आती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना। कई बार आत्महत्या जैसे तरीकों की तरफ, मतलब जो बिल्कुल ही गलत है, उस तरफ चला जाता है क्योंकि वो संवाद नहीं कर पाता। लेकिन इसका एक कारण और कभी कभी तुमको नहीं लगता देवबला, कि परिवार में जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, बताता है, तो कई लोग उसे जज करते हैं और बहुत अलग तरीके से उसे ताने मारते हैं, बहुत अलग चीज़ें बोलते हैं। इस वजह से वो डर, एक दहशत जो दिमाग के अंदर होती है, क्योंकि हस्बैंड है, मान लो घाटा हो गया, कुछ हो गया, अरे जब नफा हो रहा था तब तो आपको सबको बड़े मज़े आ रहे थे,
0: सही है,
1: राइट, तब तो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे आप उनकी इनकम से। जब किसी कोई डिसीजन हो गया तो एक पारिवारिक माहौल में उनको सहारा, संबल देने की आवश्यकता होती है उस समय पर। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं यदि बचत करें तो वो पैसा निकाल के भी दे सकती हैं उस समय पर, कि आप चिंता मत करो, ये पैसे हैं, इससे कुछ ना कुछ और मैनेज हो जाएगा।
0: और जो तुम संवाद की बात कर रही हो ना, कि घर पे कह देते, और थोड़ा सा कोशिश ये करना भी जरूरी है कि बहुत सी बार फैमिली के लोग बोलते भी हैं लेकिन बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं होता। जैसे कहता है ना कि शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द आनंद करे दूजो करे घाव। बात करनी है लेकिन सार्थक शब्दों से करनी है, पॉजिटिव शब्दों से और प्रेम भरे शब्दों से करनी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब ऐसी कई सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ पर कि भाई नहीं मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है आपसे, आप थक गए हो, आप परेशान हो गए हो, चाहे वो बच्चे हों, कई बार हम इतनी एक्सपेक्टेशंस उनसे पाल लेते हैं कि आपको सो एंड सो तो करना ही है, ये चीज़ तो इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। यदि उनसे नहीं हो रहा है तो सच में अपने माँ बाप को बताएं, और हम भी अब कम से कम उनको समझें, उनको कि उनकी कैपेसिटी के अनुरूप ही वो कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि आप वो समझ लें तो बच्चा भी उस दहशत में नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत रास्ते हैं जीवन में जो बहुत अच्छी जगहों पर लेकर जाते हैं अल्टीमेटली। तो हमेशा ये मत सोचें कि भाई ये चीज़ ही करेगा, इसी से ही जिंदगी में मतलब ऊपर जाओगे आप लाइफ में। तो ये बहुत कई बार आप माँ बाप बैठ के डिसीजन करो, अच्छे से बात करो उस बच्चे से, ताकि वो ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे।
0: बिल्कुल। और बच्चों की बात करें और साथ ही बुजुर्गों की यदि हम बात करें रेखा, कि संवाद की जो कमी सबसे ज्यादा होती है बुजुर्गों के साथ, सबसे ज्यादा अकेला फील करते हैं। मतलब परिवार में कहीं भी हो, पति पत्नी का मामला हो, देरानी जेठानी का हो, माँ बच्चों का मामला हो, या फिर बुजुर्गों के साथ कहें, तो हर जगह संवाद का महत्व है। तो समय आने पर हमें बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और मैं तो यही कहूंगी श्रोता सखियों कि भावनात्मक सहारा सबको चाहिए होता है परिवार में संवाद को बेहतर बनाने के लिए। कई आजकल तो ऐसे बढ़िया उपकरण हैं, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स हैं, यदि विदेश में हैं तो आप वहाँ पर भी बातचीत कर सकते हैं। और समस्याओं का समाधान जब परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो बड़े से बड़े विवाद और परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो श्रोता सखियों, और भी आपसे बातें करेंगे, है ना,
0: संवाद करेंगे
1: पर उससे पहले हम सुनते हैं एक बहुत अच्छे, आए दिन हम अपने स्टूडियो में जो है बुलाते रहते हैं अपने गेस्टों को और बहुत अच्छी सी चर्चाएं आपको सुनवाते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आप हम सुनते हैं AI शिक्षा और जागरूकता पर डॉक्टर चंद्रेश छतलानी से देवबाला सोनी की बातचीत। तो श्रोता सखियों, हम भी सुनते हैं और आप भी सुनिए ये बातचीत।

0: को प्रथम हिंदी भाषी ब्लॉक के रूप में इसे मान्यता मिली है और जिसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है।
1: जी, इसके पहले के रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानना चाहूंगी।
0: इस रिकॉर्ड से पहले की मेरी जो यात्रा रही है वो शिक्षा की, तकनीक की, इन सब के संगम पर आधारित रही है। इनमें विद्यार्थियों के सीखने को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ विशेष तरह के एजुकेशनल गेम्स के सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे। इसके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी मैंने कुछ काम किया था। इसके साथ साथ मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में जब लॉकडाउन अपना लगा था तब लगभग 1,000 से भी कुछ ज़्यादा मैंने प्रमाण पत्र अर्जित किए थे।
1: बहुत अच्छी
0: और
1: बात है।
0: जी, और इसी तरह से अपने विश्वविद्यालय के लिए और दूसरे कार्यों को सुगम बनाने के लिए मैंने करीब 100 से अधिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रखे हैं और 50 से अधिक मेरी वेबसाइट डेवलप्ड है। तो इस तरह से कुछ सम्मान और कुछ इस तरह के रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं मुझे।
1: जी, तो आए दिन हम आपकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ते ही हैं। तो और भी सर, किन क्षेत्रों में आपने काम किया है?
0: जी, मैं तो खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे प्रयासों को समय समय पर सराहना मिली है। मुख्य रूप से मैंने 3 क्षेत्रों में काम किया है। पहला क्षेत्र है तकनीक, दूसरा क्षेत्र है शिक्षा और तीसरा है साहित्य। तकनीक में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर कार्य किया है। अब इन दिनों मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा हूँ जिसमें जनरेटिव AI और एजेंटिक AI जैसी जटिल और आधुनिक तकनीकों को जोड़कर मैं जो हमारे समाज में जो हिंदी भाषी लोग हैं
1: जी,
0: उन्हें समझाने के ये प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं स्वयं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक विश्वविद्यालय में। शिक्षा तो प्रदान कर ही रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी और जो लाइव शिक्षा हो उसको प्रदान कर सकूँ, न कि केवल एक थ्योरेटिकल शिक्षा प्रदान करूँ। साहित्य में मेरा ये मानना है कि यदि मैं समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं को और युवाओं को भी साहित्य के द्वारा किसी भी तरह से सशक्तिकरण के कार्य कर सकूं तो वो मेरा सौभाग्य होगा और इसी का प्रयास कर रहा हूं मैं।
1: जी।
0: जी
1: और हमारी सखियों, हमारे श्रोताओं को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपकी सभी सखियों और जो प्रबुद्ध श्रोताओं हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी नई चीज़ आती है उससे कभी डरे नहीं।
1: जी।
0: जैसे कई जने अब यही से डरते हैं कि नौकरी चली जाएगी या कुछ और हो जाएगा, पर डरने के बजाय इसे अपना साथी बनाए। आज हम
1: अच्छा,
0: सभी AI के दौर में ही जी रहे हैं। अब डिजिटल दौर के बजाय अब हम AI के दौर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर भाषा तो कभी भी ज्ञान के आड़े में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैंने भी AI बोध के माध्यम से इस जटिल तकनीक को अपनी मातृभाषा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है ताकि हर गृहिणी, हर छात्र और हर कामकाजी महिला भी जनरेटिव AI को सीखकर आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही अपनी जड़ों, अपने पर्यावरण और मानवीय संवेदनाओं को सहेजते हुए नई तकनीकों को सीखें और जीवन में लगातार आगे बढ़ें। मेरा यह भी मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, केवल शुरू करने का एक हौसला होना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत ही सुंदर जानकारी और शिक्षाप्रद जानकारी, और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे उदयपुर से आप हैं
1: बिल्कुल
2: और आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सो श्रोता सखियों, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये शिक्षाप्रद और जानकारी। और AI शिक्षा और जागरूकता पर डॉक्टर चंद्रेश छतलानी से देवबला सोनी की बातचीत श्रोता सखियों आपने सुनी और हमने भी सुनी। तो आइए सुनते हैं एक संदेश और उसके बाद गीत।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
4: अच्छा
3: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
4: वो क्या है मम्मी जी?
3: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
4: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: श्रोता सखियों, टेलीफोन धुन में है ना ये गीत आपने सुना, ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की वॉइस। ये खुशियाँ चारों तरफ छाई है, देखो सोने की चिड़िया वाले देश में सालों बाद सोने की लहर आई है ना। सो ये गाना जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है डिजिटली, है ना, और जिसका म्यूजिक और उस तरह की चीज़ें आप देखोगे तो बिल्कुल शानदार सा फीलिंग आता है। और कहीं ना कहीं डिजिटल की स्टार्टिंग मुझे लगता है इससे वाले गानों से शुरू हुई है। ए आर रहमान के कुछ गीत ऐसे ही लगते हैं। और जब हम बात करें डिजिटल इंडिया से हमारे जो देश की आत्मनिर्भरता की, तो डिजिटल इंडिया अभियान भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे मजबूत रीढ़ साबित हुआ है। जुलाई 2015 को शुरू हुए इस कार्यक्रम से देश को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक प्रमुख निर्माता और वैश्विक लीडर जो है हमारा देश बन गया है इससे।
1: और इसका उद्देश्य था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना, और इसके अंतर्गत ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और इंटर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है।
0: बिल्कुल। और जब आप बात करेंगी स्वदेशी डिजिटल भुगतान की, तो देखिए किसने सोचा था कि हम सीधे मोबाइल हाथ में लेंगे और फट से पैसे इधर से उधर हो जाएंगे।
1: तो
0: चाहे
1: कभी कभी तो बहुत अटपटा सा लगता था ना, विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा
0: हाँ,
1: होता
0: वी
1: भी
0: नेवर
1: है।
0: ट्रस्ट कि ऐसा हो सकता है ना।
1: हाँ
0: और जब ये होने लगा है तो कितना अच्छा फील आता है। और कई बार जब आप है ना बैंकों की लंबी लाइनों में कतारों में नहीं खड़ी हैं, तो ये डिजिटली जो हमारा बेनिफिट है हर लेवल पे, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और यदि हम बात करें स्वदेशी डिजिटल भुगतान की, तो वैश्विक लीडर जो है हमारा देश है, भारत का अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जिसे हम यूपीआई कहते हैं पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, और हम उस दिशा में वैश्विक लीडर बन गए हैं। और आत्मनिर्भरता का खात्मा यदि हम कर होने से, क्योंकि इसके आने से विदेशी कार्ड जैसे पुराने जो विदेशी कार्ड होते थे वीज़ा और मास्टर कार्ड, तो उन पर हमारी जो है आत्मनिर्भरता बहुत कम हो गई है।
1: और
0: सो हम सेल्फ
1: आत्मनिर्भर
0: इंडिपेंडेंट होते जा रहे
1: बिल्कुल, और
0: हैं।
1: आर्थिक क्षेत्र में भी हम बात करें तो नई संभावना के द्वार खुले हैं। आज छोटे व्यापारी देख लें, या फिर किसान को देख लें, या फिर महिलाओं को देख लें, और युवा डिजिटल जो भी हैं तो डिजिटल माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों जैसे कि यूपीआई भीम की जो तुम बात कर रही हो, तो इससे लेन देन सुरक्षित बन गया है।
0: बिल्कुल
1: और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे उद्यमी हैं जो छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को देश विदेश में बेच रहे हैं, इससे रोजगार के नए अवसर भी बने हैं, लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है।
0: बिल्कुल
1: महिलाएं देख लें, हम कितनी महिलाएं हैं जो ऑनलाइन मतलब अपना काम कर रही हैं, बहुत सारी कमाई कर रही हैं, और जो युवा हैं वो भी घर बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: बिल्कुल। हर क्लिक में बढ़ती है हमारी पहचान, हर क्लिक में बढ़ती है हमारी पहचान, डिजिटल पहचान, और डिजिटल मार्केटिंग से बनती है हमारी ब्रांड, है ना। सो ऐसा ही सुंदर देश में हमारे ये माहौल बना हुआ है। और ग्लोबल रीच की यदि हम बात करें, तो आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का लगभग 46% भारत में, अकेले हमारे देश में होता है भारत में, और फ्रांस, सिंगापुर और विकसित देश भी इसे अपना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो चिप क्रांति, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत देश अब चिप और सेमीकंडक्टर का आयातक बनने के बजाय घरेलू स्तर पर इसका निर्माण कर रहा है। सो यदि आप बात करें मोबाइल उत्पादन की, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंसिव जैसे PLI स्कीम के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है।

0: इससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे देश में आई है। और स्टार्टअप और रोजगार की यदि हम बात करें तो युवाओं का सशक्तिकरण डिजिटल इंडिया के कारण देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। स्थानीय समाधान की यदि हम बात करें तो भारतीय युवा विदेशी ऐप्स पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए स्वदेशी ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म कृत्रिम AI मैपिंग टूल्स खुद विकसित कर रहे हैं। और क्रिएटर इकोनॉमी की बात करें तो इंटरनेट की पहुंच गांवों तक होने से युवाओं को घर बैठे स्वतंत्र रूप से कमाई करने के बहुत सारे अवसर मिले हैं। तो यदि आप बात करोगे कि डिजिटल इंडिया से हमारा किस तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो ये बहुत ही गर्व के और उपलब्धियों के हमारे क्षण हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हमने सुनी थी टॉक
1: टॉक
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो इसी तरह से यदि सभी लोग इस तरह से प्रयास करें तो हमारे देश में बहुत सारे कीर्तिमान है ना स्थापित
1: और
0: हो
1: देश के
0: जाएंगे।
1: हमारे शहर के व्यक्ति ने इतना प्रयास कर लिया,
0: बिल्कुल,
1: तो कितनी गर्व की बात है।
0: यही चीज कह रही हूँ कि यदि हम लोग सब भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो नंबर वन पे आ सकता है। चलिए और भी बातें करेंगे श्रोता सखियों आपसे, पहले सुनते हैं संदेश और उसके बाद गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नो
6: बहुत शानदार गीत,
5: बहुत ही खूबसूरत गीत। और सच बात है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते हैं। वास्तव में कभी कभी हम देखते हैं ना कि छोटे होते हैं तो ऐसे लगता है बड़े होंगे तब अच्छा लगेगा, बड़े होते हैं थोड़े तो लगता है कि अरे यार हमसे जो बड़े हैं वो और ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, और इसी में ज़िंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं होता, और है ना वृद्धावस्था हो जाती है, और उस समय

0: देखो कि कई बार कहते हैं, कई ऐसे नज़ारे खुद के सामने आते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। और जब हम बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर में कहीं ना कहीं अपने आप को जब पीछे रखते हैं, और वो बच्चे जब अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तब ये लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में जो सुंदर हमारा खुद का समय था, वो हमने नहीं जिया। हम तो हो गए बुज़ुर्ग, और अब ये जो यंगस्टर्स हैं, हमारी उतनी केयर भी नहीं करते।
1: बिल्कुल, तो कोशिश होना चाहिए कि सभी जो वृद्ध हैं उनकी केयर भी हो। और जब तुम बात कर रही थी कि नहीं कितनी बार ऐसा होता है कि वृद्ध की केयर नहीं होती है, तो जबकि बोलते हैं ना कि जो वृद्धावस्था जीवन का वो चरण होता है जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है,
0: बिल्कुल।
1: और जब सम्मान नहीं मिल पाता है और जो ऐसी गंभीर समस्याएं देख रहे हैं, तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि हम अब जागरूक हो सकें कि हमें वृद्धजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और यह दिन बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें रोकने के लिए समर्पित है, और आज वही 15 जून है। हम बात करें मानव अधिकारों की रक्षा, तो यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को भी समाज में अन्य आयु वर्ग के लोगों के साथ समान गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये मानव अधिकारों की रक्षा है। यदि हम जागरूकता बढ़ाने की बात करते हैं, तो दुर्व्यवहार के विभिन्न रूप, जिसमें हम शारीरिक, भावनात्मक, यौन और वित्तीय के बारे में समाज को जागरूक करना हमारा प्रथम प्रयास है।
1: और इसी के साथ दुर्व्यवहार के प्रकार में हम बोल सकते हैं सामाजिक उपेक्षा भी होती है। कई बार होता है कि घर में बुजुर्गों को सबसे मिलना नहीं दिया जाता है, उनके मनोरंजन का या फिर जो उनकी सुख सुविधा है उनका ध्यान नहीं रखा जाता, समय पर भोजन, दवा, आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जाती। और कितनी बार रेखा इसका कारण भी होता है कि जो आज हम देख रहे हैं कि जब हमने देखा कि इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2006 से, मतलब सही समय है कि पहले होते थे संयुक्त परिवार, तो बुजुर्गों को इतना सम्मान, मतलब कहने की जरूरत, दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही सम्मान हो जाता था। आज जब संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर भी है, तो इससे भी होता है कि बुजुर्ग थोड़े इससे प्रताड़ित हो जाते
0: और
1: हैं।
0: तुमने कई बार देखा होगा कि कई स्थितियां तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना बुजुर्गों को, उनको प्रताड़ित करना, अपमानित करना, डराना, धमकाना, उनकी संपत्ति, उनके पैसों का अवैध रूप से दुरुपयोग करना, और भोजन, आश्रय और चिकित्सा जैसे बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रखना भी हमने आज की समय में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रोता सखियों, अब जगने का समय है, इस तरह की हरकतें नहीं करें, और अपने बुजुर्गों को जो है वो बहुत अच्छे से आदर और सम्मान दें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक वट वृक्ष के छांव में आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनसे बहुत, उनका जो अनुभव होता है उससे कई सारी चीज़ें दुनिया के अंदर आप कर सकते हैं।
1: तुम्हारी बात पे मुझे दो पंक्तियां याद आ रही रेखा, कि फल न सही छांव तो देगा,
0: बिल्कुल
1: पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। तो प्रयास करें कि बुजुर्ग की बात को महत्व दें, उनके सम्मान का ध्यान रखें, और सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी कानूनी जो कानून हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सामाजिक सुविधाओं का ध्यान रखें, और स्वास्थ्य की बात यदि हम करते हैं तो उन्हें जो भी उनका रूटीन चेकअप वगैरह है वो हमें ज़रूरी करना चाहिए, उनके जो आवश्यक जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनकी डेली रूटीन की वो उनके पास में होना चाहिए, उनके मनोरंजन का भी हम ध्यान रखें, और उनको तकनीकी सहायता भी दें, मतलब समय समय पे उनके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके फ्रेंड सर्कल वगैरह हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग भी करवा सकते हैं, और बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही बात है। और नियमित रूप से उनका आप जो है डॉक्टर से चेकअप करवाएं, घर में पर्याप्त रोशनी रखें विशेषकर रात के समय में, और बाथरूम और सीढ़ियों पर सपोर्ट के हैंडल लगाएं, और यदि बना सकते हैं पॉसिबल हो तो बाथरूम में ऐसी टाइल्सें शुरू से ही नहीं लगाएं जिससे वो फिसलने से उनको मुश्किल हो। साथ में उनके भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें, हल्का और पौष्टिक खाना दें, हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त मात्रा में फाइबर, और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के जो अकेलापन है उसमें सहारा दें, क्योंकि इसी वजह से उन्हें डिप्रेशन होता है। और हमारे तो भारतीय समाज में परंपरा है कि दादा दादी, नाना नानी के साथ बच्चे बैठते हैं और उनके बातें करते हैं और उनसे स्टोरीज सुनते हैं, और आज बहुत भाग्यशाली वो होते हैं जिनके घर में ये वृद्ध जन रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो जो आज हम संवाद की बात कर रहे थे कि ये संवाद का महत्व यहाँ उजागर होता है, कि कभी भी बुजुर्गों को अकेलापन नहीं रहने दें, घर से आप बाहर निकल रहे हैं उन्हें प्रणाम करके निकलें, घर से बाहर कोई अपनी बातचीत हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं तो बड़े बुजुर्गों को सुनाएं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल। और श्रोता सखियों, और भी बातें करेंगे फिर बाद में कभी, आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना चहेता कार्यक्रम महिला जगत, ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए एक बार आपको फिर से ले चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

श्रोता, दोपहर का समय जो होता है थोड़ी राहत का, थोड़ी मुस्कान का और कुछ मधुर गीतों के साथ खुद को तरोताजा करने का। तो अगले कुछ पलों तक हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी फिल्मों के ऐसे चुनिंदा गीत जो आपके मन को सुकून देंगे और दिल को और भी खुशनुमा बना देंगे। चाहे आप घर में हो, दफ्तर में हो, सफर में हो, हमारे साथ जुड़े रहिए संगीत की सुरीली महफिल का

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: कहते हैं एक जमाना था जब दिल की बातें मोबाइल संदेशों से नहीं बल्कि खतों के जरिए पहुंचती थी। हर शब्द में इंतजार होता था, हर पन्ने पर प्यार और हर खत में किसी अपने की यादें बसी होती थी। हमारा यह अगला गीत उसी दौर की मीठी यादों को ताज़ा करता है। इसकी भावपूर्ण गायकी, मधुर संगीत और दिल को छू जाने वाले बोल से आज भी श्रोताओं को पसंदीदा बनाते हैं। तो आइए प्यार और एहसास से भरा यह खूबसूरत नगमा सुनते हैं।

कहते हैं कि प्यार जब अपनी खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ता है तो हर पल किसी हसीन ख्वाब जैसा लगने लगता है। रंग बिरंगे फूलों के बीच प्रकृति की गोद में फिल्माया गया यह हमारा अगला गीत आज भी रोमांटिक गीतों की सूची में खास मुकाम रखता है। मधुर संगीत, दिल को छू जाने वाले बोल और शानदार गायकी ने इस गीत को सदाबहार बना दिया है। हर बार सुनने पर यह गीत नई ताजगी और नए एहसासों से भर देता है। तो आइए सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये यादगार नगमा।

शोना कहते हैं कि जिंदगी की बाली उम्र अपने साथ ढेर सारे सपने, नई उम्मीदें, दिल में उठने वाले अनगिनत एहसास लेकर आती हैं। इसी मासूमियत, चंचलता, प्रेम की मिठास को खूबसूरती से समेटे हुए ही ये हमारा अगला गीत। कहते हैं कि किशोर उम्र में जब दिल पहली बार किसी की ओर आकर्षित होता है तो और एहसास नया सा लगता है, धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती है, ख्वाब सजने लगते हैं और हर पल किसी खास के ख्यालों में बीतने लगता है। इन्हीं मासूम जज्बातों और पहली मोहब्बत की मीठी सी हलचल को खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला गीत। मधुर संगीत और दिल को छू जाने वाले बोल इस गीत को सुनने वालों के दिलों में एक अलग ही जगह दिलाते हैं। तो आइए प्यार की इस हसीन भावनाओं के साथ सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ ऊपर संगीत है आज की सुरीली महफिल यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है कि आज प्रस्तुत किए गए गीतों ने आपकी दोपहर को और भी खुशगुना सुकून भरी और यादगार बना दिया होगा। आपका प्यार, विश्वास और साथ ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। इसी तरह आपका स्नेह बना रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जी आकाशवाणी का उदयपुर है, दोपहर के 2:10 हो चुके हैं। ये सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में हमारा आज का विषय है भारत की विदेश नीति।

भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। यह नीति इंडिया फर्स्ट और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके तहत भारत किसी महाशक्ति के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से अपने हित में निर्णय लेता है।

0: भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और स्तंभ इस प्रकार है, गुट निरपेक्षता, किसी भी सैन्य गुट या महाशक्ति से औपचारिक रूप से न जुड़ना ताकि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनी रहे। अगला सिद्धांत है पंचशील, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का आधार, जिसमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। अगला सिद्धांत है रणनीतिक बहुध्रुवीयता, एक तरफा निर्भरता के बजाय अमेरिका, रूस, यूरोप और ग्लोबल साउथ के साथ संतुलित और व्यावहारिक संबंध बनाए रखना। पड़ोसी पहले अपने सीमावर्ती देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता देना, आर्थिक और तकनीकी कूटनीति जिसके अंतर्गत विदेशी निवेश आकर्षित करना, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और उन्नत तकनीक के साझेदार। वैश्विक मंच पर नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुधारों और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखर होकर भारत के हितों की पैरवी करना। ये देखिए आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय युग है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों की पारंपरिक आत्मनिर्भरता वह सच्चाई है जिसमें कोई देश बच नहीं सकता। आज विश्व के सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति व उनमें संवर्धन के लिए प्रयासरत हैं। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी संबंधों में स्वतंत्र विदेशी नीति का प्रयोग करता है। विश्व के अधिकांश देश यह प्रयास करते हुए देखे जाते हैं कि उनकी विदेशी नीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे अपनी विदेशी नीति में राष्ट्रीय हित के उन लक्ष्यों विदेशी नीति में राष्ट्रीय हित के उन लक्ष्यों को गौण स्थान रख देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास पैदा करते हैं। भारत भी इसका अपवाद है। भारत भी अपने स्वतंत्र और राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों से सामंजस्य स्थापित करने वाली विदेशी नीति है। श्रोता विकास चर्चा बस यहीं तक की, आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। वक्त हो चला है दोपहर समाचारों का, जिसे हम रिले करेंगे तुम्हारे दिल केंद्र से समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौता

0: परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए

0: बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिनभर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय दोपहर की 2:30 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में किसान परिवार सुनेंगे अपना चहेता कार्यक्रम कृषि जगत।

राम राम किसान भाई, राम राम कृषि जगत हुआ वाला सब किसान भाई बहना ने अनीता गन्नारो राम राम सा। किसान भाई देखो कार्यक्रम रो टेम भी हो और आप ही सब जना जो है अपने कार्यक्रम रे महीने उपस्थित हुई गया हाँ। और देखो भाई अटे वेवा भी क्यों नहीं, चाहे आप मौसम री जानकारी करावा, फसला रे कसी फसल लेनी है, कणी मौसम महीने कई कई फसला लेनी है, खरपतवार रे नियंत्रण रे वाते कई करनो है। और देखो रोज नवी नवी और भांत भांत री जानकारी करा, सब जना हलमल ने बैठा सुख दुख री वाता करा। ना बार देखो अधिक मासो महीनो भी चल रो है, कोई तो देखो व्रत करना आया ना, आज होमवती अमावस्या भी है, एन कंडे घरे तो होम भी किया है। तो ये देखो सब अपना किसान भाई बहन जो है झटपट अपने कार्यक्रम में उपस्थित हो गया है। तो आज आप किसान री बात में बात करांगा खरीफ फसलों पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सा। देखो भाई या जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की दी गई एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है। भारतीय कृषि बड़ा पैमाना पे देखो मानसून और मौसम रे मिजाज पे निर्भर करे। ऐसा महीने देखो प्रतिकूल मौसमी जी भी परिस्थितियाँ वे भी कम वर्षा के कारण हुको, ज़्यादा बाढ़, कीटारो प्रकोप और ओलावृष्टियों किसानारी मेहनत पे जो है नरी दान कही है कि कतरी भी मेहनत करे तो बणियों पानी फर जावे है। अंडे वास्ते देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या जो है प्राकृतिक और अप्रत्याशित जतरा भी जोखिम है वनारे खिलाफ किसाना ने एक व्यापक सुरक्षा कवच देवे है। और विशेष रूप जतरी भी खरीपरी जी फसला है जिस तरह धान है, मक्का, बाजरी है, कपास है, सोयाबीन है, मूंग है, मूंगफलियाँ है, अनारे वाते भी देखो जोखिम और सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करे है। खरीफ फसला रे वाते अगर प्रीमियम दरारी बात करा किसान भाई, तो देखो अणी योजना की सबू बड़ी विशेषता यह है कि अंडी बहुत कम और जी वहनी प्रीमियम दरा है अपने किसान भाई वहन कर सके वी दरा अणी महीने आवे है। पूर्ववर्ती देखो बीमा योजना की तुलना रे महीने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत किसान पे देखो वित्तीय बोझ तो काफ़ी

कम कर दी दो है। खाद्य और तिलन फसला की अगर बात करा किसान भाई, तो देखो सभी जी भी खरीबरी फसला है, खाद्य फसला है, जना महीने अनाज है या मोटा अनाज है या दाला आएगी। और तिलन री फसला रे बातें देखो, किसान भाई ने कुल बीमित राशि रो केवल वना ने 2% प्रीमियम इस देनो पड़े सा। अंडर लाड़ला रे किसान भाई, देखो वाणिज्यिक और बागवानी फसला की अगर बात करा तो देखो कपास है, गन्नो है, ये ऐसी जी वार्षिक वाणिज्यिक या पचे बागवानी खरीफ फसला रे वास्ते भी अनारी जी प्रीमियम दरा निर्धारित की दी तकी है वी 5% है। अंडर लाड़ला रे देखो सरकारी सब्सिडी किसान भाई अगर बात करा तो अपने किसान भाई द्वारा जो है दे अणि निर्धारित प्रीमियम ने 2% या पचे 5% रे बाद में वची तकी जत्री भी शेष प्रीमियम री राशि है वनो भुगतान केंद्र और राज्य सरकार रे द्वारा 50-50% रे अनुपात में सब्सिडी रे रूप में ने कीदो जावे सा। किसान भाई देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे बारे में ने आगे और बातचीत करांगा, लेकिन चटापेली हुना एक राजस्थानी लोकगीत।

हाँ तो किसान भैया देखो सुंदर सो मन भावन भजन हुणियो पधारो मारा नटवर नागरिया। और देखो भाई अधिक मासरो महीनो चाल रो है और देखो आज होमवती अमावस्या है और मंदिरा में चार याडी देखा तो देखो धूम मची तकी है। दान पुण ऋण सब जना जो है दान पुण कर रहा है। मंदिरा में भी कतारा लाग रही है तो आपा भी भगवान ने प्रणाम करा और वणारो जो आशीर्वाद है अपने पे वण्यो तो कोरे वैसा। अणि ऊँ जटा पेली आपा किसान री बात कर रहा है कि खरीफ फसलों पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनारी तो देखो सरकारी सब्सिडी री जटे आपा बात कर रहे हैं। हाँ तो वणी मैंने किसान भाया द्वारा देखो दे जा भी निर्धारित प्रीमियम री जा राशि है वह 2 या 5% रे बाद में वजी तक ही जितनी भी शेष राशि वे वंडो भुगतान केंद्र और राज्य सरकार रे द्वारा 50% रे अनुपात रे महीने सब्सिडी रे रूप महीने की दो जावे। योजना री स्वैच्छिक प्रकृति री अगर बात करा तो देखो शुरुआत महीने या योजना ऋण लेवा वाला जे भी किसान भाई है वणारे वास्ते जरूरी ही लेकिन खरीफ री 2020 रे केड़े हूँ सरकार जो है अणी महीने सब किसान भाइयों वास्ते पूरी तरीके स्वैच्छिक वणे दीदो। अब चाहे किसान भाई जो है वणाने किसान क्रेडिट कार्ड हूँ या पछे बैंक हूँ फसल ऋण लीधो है या नहीं लीधो है तो भी अपने इच्छाओं और जरूरत रे अनुसार अणी योजना महीने शामिल वही सके या पछे अणी बाहर रहेवारो भी विकल्प चुन सके सा। खरीफ सीजन महीने कवर दीदा जावा वाला जी भी जोखिम है अणी महीने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महीने खरीफ फसला रे वास्ते बुवाईयों लेने देखो कटाई रे बाद तक पूरा चक्र रे महीने सुरक्षा प्रदान की दी जावे। अंडे तहत देखो 4 चरणा महीने जोखिम रो जो है कवर दीदो जावे किसान भाया ने। अगर बुआई रोपण महीने रुकावट रहेगी वे यदि कम वर्षा हुई वे या प्रतिकूल मौसम परिस्थिति रे अनुसार अधिसूचित क्षेत्र महीने किसान भाई अपनी खरीफ री फसल री बुआई या रोपण नहीं कीधो कर पावे तो देखो वहाँ ने बीमित राशि रो 25% तक रो क्लेम भुगतान करने पॉलिसी समाप्त कर दी जावे है। खड़ी फसल ने नुकसान वे गयो वे स्थानीयकृत आपदा आएगी वे कटाई रे बाद में अगर नुकसान वे गयो वे क्षति रो आंकलन और प्रौद्योगिकी रो अगर वणा उपयोग नहीं कीधो वे और कहीं भी प्रकार रो और भी कोई नुकसान वे गयो वे तो वणा ने देखो खरीफ सीजन रे महीने कवर कीधा जावा वाला जतरा भी जोखिम है वणा महीने वणा ने कवर प्रदान कीधो जावे सा। तो देखो भैया अपने जो किसान भाई है वणा ने अतरी बढ़िया अपने जो सरकार है सुविधा दे रही है कहीं भी प्रकार री मौसम रे कारण अगर कोई भी खराब हो जावे तो भी देखो ये अपने यो भुगतान ले ही सके है सा। देखो कार्यक्रम में वाता चीतान जानकारियां और भी करांगा लेकिन जटा पेली हुना एक राजस्थानी लोकगीत।

तो देखो भाई किसान भाई, ये तो सुंदर सोमन भावन राजस्थानी गीत हुनियो। और कार्यक्रम में देखो अभी आपा जानकारी करावा कि नीम आधारित जतरा भी उत्पाद है वनारो उपयोग करनो चावे सा। नीम ने देखो अपने भारतीय संस्कृति में ने और आयुर्वेद में ने सर्व रोग निवारिणी यानी सब बीमारियां ने दूर करवा वालो मानो गयो है। सदियों देखो अपने ग्रामीण भारत रे महीने नीम रा पेड़ रा हर हिस्सा, चाहे पत्तियां वो, चाहे छाल वो, चाहे अनारा फल वो, जिन्हें आपा निम्बोली भी कहवा, फूल और जड़ रो उपयोग कणी न कणी रूप में ने किदा तक आया हाँ और करता भी रहेंगा। नीम आधारित जतरा भी उत्पाद है अनारो उपयोग देखो कृषि महीने अगर व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण रे क्षेत्र महीने व्यापक रूप अगर करा तो देखो हाउ फायदो वे वैसा। कृषि और जैविक खेती महीने अगर अंडे नीम रे उपयोग री बात करा किसान भया, तो देखो आज रा टेम महीने यदि रासायनिक खाद और कीटनाशक रे ज़्यादा ज़्यादा उपयोग के कारण अपनी जो मिट्टी है वाह और स्वास्थ्य ने वंडे नुकसान वेरियो है, तो नीम

आधारित उत्पाद जैविक खेती रे वाते एक वरदान भी साबित वे रहा है सा। नीम रा तेल री जटे अगर किसान भाई बात करा तो देखो, नीम आधारित कीटनाशक मैंने नीम रा बीजाऊ निकाले जावा वालों जो तेल है वो हो बढ़िया प्राकृतिक कीटनाशक है, जो फसला ने नुकसान पहुँचावाऊँ 200 ज़्यादा अधिक प्रकार रा हानिकारक कीटाऊँ जिस तरह एफिडस धोरी माखी सुंडी अणा सब ने भी यो नियंत्रित करे है। अंडे लाल लारे देखो जी भी रासायनिक कीटनाशक है वनारे विपरीत नीम आधारित कीटनाशक मित्र कीटा ने जिस तरह केंचुआ है मधुमक्खिया है अणा ने भी नुकसान पहुँचावे है। नीम री अगर खली री बात करा किसान भाया तो देखो, नीम रे बीजारो जो तेल है वनने लगावा रे बाद में इन्हें वचे तो को जो भी ठोस हिस्सो है वनने आपा नीम री खली कहवा। ई पौधा रे वास्ते एक उत्कृष्ट जैविक खाद है। मिट्टी में इन्हें मिलावाऊँ पौधा ने देखो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मले है। लाल लारे देखो ये मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ा और दीमक ने भी जो है मिट्टी रे महीने नष्ट कर देवे है। अंडे लाल लारे अगर नीम कोटेड यूरिया री बात करा किसान भाया तो देखो, भारत सरकार जो है यूरिया री बर्बादी ने रोकवा वास्ते और वनडी प्रभावशीलता ने बढ़ावा वास्ते नीम कोटेड यूरिया जो है जरूरी की दो है। नीम रो लेप यूरिया रे मिट्टी रे महीने गुलवारी गति ने धीमो कर देवे, जने यूं कहिए कि पौधा ने लांबा टाइम तक आपा सुरक्षित राख सका और वणा ने नाइट्रोजन भी मलती तकी रेवे। मिट्टी री अंडे लाल लारे उर्वरा शक्ति जो है वाभी वणी तकी रेवे। स्वास्थ्य और घरेलू उपचार री भी अगर बात करा तो देखो, आयुर्वेद रे महीने नीम ने एक शक्तिशाली और रक्तशोधक भी मान्यो गयो है। अंडे विभिन्न उत्पाद और जी भी आंतरिक स्वास्थ्य है वणा ने उदारवा महीने भी मदद करे है। नीम रा कैप्सूल है, जूस है, बाजार में नीम रे पत्ता रो रस और कैप्सूल भी आसानी आपने मल सके। अणारे नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करवाऊँ शरीर महीने जी भी अपना विषाक्त पदार्थ है भी बाने निकल जावे। अणी स्वास्थ्य देखो भाई, आप जदि चेत महीनों आवे नीमरा पेड़ रे माते जी पीली पीली ने छोटी छोटी भी जी पत्तियाँ आवे भी आपने देखो, भारतीय संस्कृति महीने भी रिवाज है कि चेत महीना महीने नीम पीवरो जो वर भर तक कणी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहे। अंडे लाल लारे देखो, अपना जो खून है वो भी साफ वेवे और अणियों कहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े और जी भी मधुमेह शक्करा जी रोगी है वनारे वाते भी देखो, वनारी जो आइया सुगर है वह नियंत्रित वेवे वणी महीने भी मदद मले है। अंडे लाल लारे देखो, अपने दांतारी देखभाल रे वाते अपने भारत महीने पारंपरिक रूप नीम री जा लकड़ी है वणी दातून रो उपयोग की दो, दातून रे महीने भी काम में लीधी जावे। आज अणी गुण रे अपनाईने देखो, नीम आधारित देखो नरी सारा जो है देखो टूथपेस्ट भी वेवे है। अंडे लाल लारे उत्पाद जो है मसूड़ा ने तो मजबूत करे ही से। लाल लारे जो अगर आता महीने पायरिया भी वही जावे तो वंडी समस्या ने दूर करवा में भी मदद करे सा। और अणियों अणा ने जो अगर नीमरी वणी लकड़ियों अगर आपा दातून करा तो देखो, मुंडा महीने अगर बदबू भी आती हुए तो वणी महीने भी आपने राहत मिले सा। मच्छर है कीट निवारक, नीमरा तेल ने देखो नारियल रे तेल रे लारे मिलई ने शरीर पर अगर लगावा तो नीम आधारित जो है ये अपने एक दवाई तैयार वही जावे और अणियों मच्छर भगाव वाला जी भी है मच्छर भगावाते जी आपा अगरबत्तियां काम में लेवा वी नहीं लेनी पड़े और मच्छर भी भाग जावे सा। तो ये अणी नरी सारी अनारो उपयोग करवाऊँ डेंगू है ई बीमारियां भी दूर वेवे है और देखो अपने शरीर भी स्वस्थ रहे और अगर खेतीवाड़ी में भी अगर अना चीज़ा ने काम में लेवा तो देखो अपने हऊ बढ़िया फायदो मिले है सा। कीटनाशका रूप में भी आप काम में ले सका। हाँ तो देखो किसान भाया, कार्यक्रम में आप हऊ जानकारी की दी कि नीम आधारित उत्पादारों उपयोग करनो चावे। अंडे पहला आप खरीफ फसलों पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना री भी बात की दी, सुंदर सुंदर मन भावन राजस्थानी गीत भी हुणिया और अबे देखो आपा चालता तका एक और राजस्थानी गीत हुणा सा।

हाँ तो किसान भाई, तो यो तो आप हुणियो सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत। और अबे देखो भाई, घड़ी रियाड़ी नारा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी वेग्यो है, तो आपा चाला सा राम राम सा।

अब एक किसान परिवार सुन रहे थे अपना चाहिदा कार्यक्रम कृषि जगत, ही आकाशवाणी उदयपुर है। कुचिपलम में मध्य दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में संयुक्त प्रेस वक्तव्य दे रहे हैं। श्री फ्रिट्ज़ो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री फ्रिट्ज़ो से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र

0: समाचार एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिका की नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर था, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया था। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के दौरान पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मेरी में 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ज पर ही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी दोपहर सभा के प्रसारण बस यहीं तक। सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। पेश है कार्यक्रम युवावाणी।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं निधि जैन और मेरे साथ हैं
1: हर्षित
0: और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है आपके सपनों की, आपके जुनून की और आपके भविष्य की।
1: दोस्तों, आज का शो काफ़ी खास होने वाला है, जहां हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और कई ऐसी शख्सियतों को जो अपने आप आपके फील्ड्स में काफ़ी पॉपुलर हैं।

0: प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वार्ट्ज घड़ियों की। ये ऐसी तकनीक है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। चलिए जानते हैं कि यह आखिर कैसे काम करती है और इससे समय देखने में हमारे नज़रिए को कैसे बदला।
1: हाँ हर्षित, तो हम सभी दिन में कई बार घड़ियाँ देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी तकनीक काम करती है, या क्वार्ट्ज घड़ियाँ अपनी सटीकता और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए गहराई से बातें करेंगे और अपनी कलाई पर बंधी इस मशीन को और बेहतर तरीके से समझेंगे।
0: समय मापने की शुरुआत बहुत पुराने

0: समय में हुई थी दोस्तों। पहले लोग क्या करते थे, सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाते थे, जिसे धूप घड़ी कहा जाता था।
1: बिल्कुल
0: इसके बाद समय का थोड़ा और बेहतर मापने के लिए रेत घड़ियाँ और यांत्रिक घड़ियाँ आई, लेकिन उन पुरानी यांत्रिक घड़ियों में पूरी सटीकता नहीं होती थी। वे अवसर प्रतिदिन कुछ मिनट पीछे या आगे हो जाती थी।
1: हाँ हर्षित, फिर विज्ञान ने एक नई दिशा दिखाई और 20वीं

0: यही स्थिरता जो है निधि और निरंतरता जो है किसी भी घड़ी को बिल्कुल सही समय बताने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने जब इस गुण को पहचाना तो उन्होंने इस पारंपरिक घड़ियों के स्प्रिंग और गियर की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि घड़ी के अंदर का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती है, एक छोटी बैटरी, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
1: और इसका काम करने का तरीका जो है बहुत ही दिलचस्प होता है। बैटरी से मिलने वाला छोटा सा करंट इस क्रिस्टल तक पहुंचता है और क्रिस्टल प्रति सेकंड ठीक 32,768 बार कंपन करता है। यह कंपन इतना तेज़ होता है कि मानव आँखें या कान इसे महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन घड़ी के अंदर लगा माइक्रोचिप सर्किट इन कंपनों को बहुत ही आसानी और सटीकता से गिनता रहता है।
0: जब सर्किट पूरे 32,768 कंपन गिन लेता है तो वह इसे ठीक 1 सेकंड मान लेता है और आगे सिग्नल भेजता है। इसी 1 सेकंड के प्लस से घड़ी की सुई आगे बढ़ती है या डिजिटल स्क्रीन पर नंबर बदलते हैं। फिर इसी सेकंड से मिनट और मिनट से घंटों की गणना लगातार और बिना रुके होती रहती है। इसी वजह से ये घड़ियाँ अविश्वसनीय रूप से सटीक होती है।
1: और अगर हम तुलना करें तो पूरी पुरानी जो हमारी मैकेनिकल घड़ियों में सैकड़ों छोटे छोटे पुर्जे और नाजुक स्प्रिंग्स होते थे, उन्हें रोज़ चाबी देनी पड़ती थी और गिरने या झटका लगने पर वे तुरंत ख़राब हो जाती थी। इसके विपरीत अब जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं तो उनमें पुर्जे बहुत कम होते हैं और कोई हिलने डुलने वाला जटिल हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ये रख रखाव में भी बेहद आसान और टिकाऊ मानी जाती हैं।
0: इस तकनीक का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी निर्माण लागत और कीमत भी है। बेहद कम कीमत में इतनी शानदार सटीकता मिलने के कारण ही यह तकनीक जो है पूरी दुनिया में आम लोगों तक पहुंच पाई है। आज न सिर्फ साधारण घड़ियों में बल्कि हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन और सभी संचार उपकरणों में समय को नियंत्रित करने के लिए इसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। और चलते चलते आपको ये भी बता दें दोस्तों कि आज भले ही हम एडवांस्ड स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में भी यही तकनीक काम करती है। विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति में छिपी एक छोटी सी खोज भी मानव सभ्यता में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, और क्वार्ट्ज इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार और समय को एक सूत्र में बांध दिया।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
3: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
4: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ कदम रखते ही आप 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 2,500 साल पीछे चले जाएं, जहाँ पर एक ही ज़मीन पर कदम रखने से आपको ग्रीक, रोमन, ऑटोमन, बिजेंटिन सभी सभ्यताओं की खुशबू मिले? जी हाँ, आज हम आपको लेके चल रहे हैं अल्बेनिया के सबसे बड़े छिपे हुए खजाने ब्यूट्रिन नेशनल पार्क की सैर पर।
1: दक्षिणी अल्बेनिया के ब्लोर काउंटी में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ सारांडा शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है।
0: बिल्कुल हर्षित, और यह एक खूबसूरत पेनिनसुला है जो कि शांत लगून और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक ग्रीक हीलिंग सेंचुरी के रूप में हुई थी, जो बाद में एक आलिशान रोमन शहर बन गया।
1: यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है निधि, यहाँ का रोमन थिएटर है, जो आज भी इतना शानदार दिखता है कि लगता है अभी कोई नाटक शुरू होने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा 6ठी शताब्दी का एक बैप्टिस्ट्री, जिसके फर्श पर बने रंग बिरंगे मोजैक्स और पक्षियों के चित्र देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ का लायन गेट और त्रिकोणिया वेनेटियन कास्टल इस बात का सबूत है कि जो भी राजा इस रास्ते से गुजरा वो इस जगह की खूबसूरती का दीवाना हो गया।
0: बिल्कुल हर्षित, और जानते हो उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ जाना बेहद किफ़ायती है। सिर्फ 1,000 अल्बेनियाई लेक यानी लगभग 10 यूरो का टिकट लेकर आप पूरे इतिहास को लाइव देख सकते हैं। और अगर आपको पुरानी इमारतें, समंदर का किनारा और इतिहास के राज पसंद है, तो ब्यूट्रिन को आप अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में आज ही जोड़ लीजिए।

0: आज हम इतिहास के एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे जिसने यूरोप का भविष्य बदल दिया। इस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध।
1: अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और वाटरलू का जो युद्ध था वो इसी महान सेनापति से जुड़ा हुआ है।
0: नेपोलियन फ्रांस का एक शक्तिशाली शासक और शानदार सैन्य नेता था। उसने कई युद्ध जीते और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बना लिया, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत से कई देश चिंतित हो गए।
1: 1814 में नेपोलियन की सत्ता छोड़नी पड़ी और उसने निर्वासन में भेज दिया गया। तो लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, कुछ समय बाद वो फिर से फ्रांस में लौट आया।
0: नेपोलियन की वापसी से यूरोप के कई देशों में हलचल मच गई, जैसे ब्रिटेन, एशिया, प्रशिया और अन्य देशों ने उसके खिलाफ गठबंधन बना लिया। अब एक निर्णायक मुकाबला तय था।
1: 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू

0: नामक स्थान के पास युद्ध शुरू हुआ। नेपोलियन अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी ओर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कर रहे थे।
1: शुरुआत में नेपोलियन को जो है जीत की उम्मीद थी। उसने कई तेज हमले किए और विरोधी सेना पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उसके अनुसार नहीं चले।
0: वेलिंगटन की सेना मजबूती से डटी रही। इसी बीच प्रशिया के सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। इससे नेपोलियन की मुश्किलें और बढ़ गई।
1: अब फ्रांसीसी सेना को दो तरफ से लड़ना पड़ रहा था। धीरे धीरे उसके सैनिक जो थे वो काफी कमजोर पड़ने लगे। युद्ध का रुख जो है वो बदलता हुआ दिख रहा था।
0: शाम तक नेपोलियन की हार लगभग तय हो गई थी। उसे युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा और उसकी सेना बिखर गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी हार साबित हुई।
1: इस हार के बाद नेपोलियन दोबारा सत्ता में नहीं लौट सका। उसे सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया और वहीं उसके जीवन का अंतिम समय भी बीता।
0: वाटरलू की जीत ने यूरोप की राजनीति को नई दिशा दी। कई देशों ने मिलकर शांति बनाए रखने की कोशिश की। इस युद्ध का प्रभाव वर्षों तक देखा गया।
1: एक मज़ेदार बात यह है कि आज भी वाटरलू शब्द का उपयोग बड़ी और अंतिम हार के लिए किया जाता है, यानी ऐसा मौका जहां वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाए। यही इस युद्ध की जो ऐतिहासिक पहचान है।
0: इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, लेकिन बल्कि उसके उनसे जो है हमें सीखने का अवसर भी मिलता है। वाटरलू का युद्ध हमें नेतृत्व, रणनीति और सही समय के महत्व की सीख देता है, इसलिए इसे आज भी याद किया जाता है।
1: दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। कहते हैं जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनुभव और संस्कार दोनों रहते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा उनका उतना ही ध्यान रख पाते हैं जितना उन्होंने हमारा रखा था?
0: बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की। एक ऐसा दिन जो हमें अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश देता है।
1: हर वर्ष 15 जून को यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ वाले दुर्व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संदेश भी देना है।
0: बिल्कुल हर्षित। और इस दिवस की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से की गई थी। आज दुनिया के कई देशों में इसे जागरूकता कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षित वातावरण मिले।
1: दोस्तों, वृद्ध दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाना ही नहीं होता, कई बार अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा या उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना भी इसका हिस्सा होता है। ऐसी बातें उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
0: बुजुर्गों को केवल दवाइयों और सुविधाओं की जरूरत नहीं होती अर्जित, उन्हें प्यार, सम्मान और अपनत्व की भी आवश्यकता होती है।
1: सही कहा, बिल्कुल।
0: कई बार कुछ मिनट की बातचीत भी उनके चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कान ला देती है।
1: हमारे दादा दादी, नाना नानी अनुभव का जो खजाना होते हैं, उन्होंने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया होता है। उनके अनुभव में हमें सही दिशा मिलती है।
0: आज की हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई ना अर्शद कि हम बहुत भाग दौड़ में रहते हैं और काफ़ी बिजी हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और यही समय उन्हें एहसास दिलाता है कि वे अपने परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं।
1: युवाओं की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने बुजुर्गों की बात ध्यान से सुन सकते हैं और उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों।
0: साथ ही हमें समाज में ये भी संदेश फैलाना चाहिए कि बुजुर्ग जो हैं वो बोझ नहीं है बल्कि हमारी धरोहर हैं, और उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी हम सब की है। एक अच्छे समाज की पहचान यही होती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है।
4: दोस्तों, जब भी ईमानदारी, समाज सेवा और जन जागरूकता की बात होती है तो एक नाम जरूर याद आता है, अन्ना हजारे। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
3: अन्ना हजारे का जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम किसान बाबूराव हजारे है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का साहस नहीं छोड़ा।
4: शुरुआती जीवन आसान नहीं था उनका, परिवार की स्थिति साधारण थी और कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
3: युवा व्यवस्था में अन्ना हजारे भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की और अनुशासन का महत्व सीखा।
4: सेना का जीवन उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता सिखा कर गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान है।
3: दोस्तों, बात करते हैं रालेगंज सिद्धि का विकास। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने गांव रालेगंज सिद्धि लौटे। उस समय गांव का पानी भी जो है उसमें काफ़ी कमी थी, गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था गांव। उन्होंने बदलाव का संकल्प लिया
4: और उन्होंने ग्रामीणों को साथ लेकर जल संरक्षण के कार्य शुरू किए, पेड़ लगाए, पानी बचाने की योजनाएं बनाई और धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी।
3: कुछ वर्षों में रालेगंज सिद्धि एक आदर्श गांव बन गया। यह बदलाव सामूहिक प्रयास और सही नेतृत्व का प्रमाण था।
4: अन्ना हजारे ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए।
3: साल 2011 में उनका आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना। इस आंदोलन में युवाओं को यह संदेश दिया कि जागरूक नागरिक समाज में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि उनको कौन से अवार्ड्स मिले थे। उनको सबसे पहला अवार्ड मिला था इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मृता अवार्ड्स, जो है 1986 में मिला था उन्हें। फिर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1990 में, फिर पद्म भूषण से 1992 में।
4: बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम उनके जीवन की बात करें तो जीवन उनका बहुत ही सादा सा था। वे हमेशा सादगी, ईमानदारी और सेवा के मूल्यों को महत्व देते थे।
3: अगर उनके जीवन से एक सीख लेनी हो तो वो यह है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी है।
4: बिल्कुल, और मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी हमें भी बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी और शख्सियत की या व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास के बल पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
4: दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। तो आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल, यानी एलन मित्तल की।
3: प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उसमें काफ़ी संघर्ष रहा। एलन मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को मेहनत करते हुए देखा। यही जो है उसे उन्होंने सीखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
4: उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक व्यवसाय से जुड़कर काम शुरू किया, लेकिन

0: उनका सपना केवल एक व्यवसाय चलाने का नहीं था, वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी पहचान दुनिया भर में बने।
1: निधि, अब इनकी व्यावसायिक यात्रा की बात बोली दी है तो वो भी बता देते हैं। दोस्तों, किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता जो है आसान नहीं होता है, ये तो आप सभी को पता है। एलन मित्तल के सामने भी कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर से देखा।
0: उन्होंने भारत के बाहर भी अपने व्यवसाय का विस्तार शुरू किया। कई देशों में जाकर उन्होंने स्टील उद्योग की को समझा और नए अवसर भी तलाशे। धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा।
1: अब देखते हैं उनकी रणनीति जो है सफलता तक कैसे पहुंची। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेते थे। उन्होंने कई ऐसी स्टील कंपनियां को खरीदा जो घाटे में चल रही थी। लोग जहां समस्या देखते थे, वहां वे संभावनाएं देखते थे।
0: अपनी रणनीति और प्रबंधन क्षमता के बल पर उन्होंने उन कंपनियों को फिर से सफल बनाया, और यही उनकी दूरदृष्टि थी जिसने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। उनकी सफलता का जो आधार था वो केवल पैसा नहीं था, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता थी।
1: दोस्तों, साल 2006 उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष उनकी कंपनी एर्सलो मित्तल का गठन हुआ। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में शामिल हो गई।
0: और यह उपलब्धि केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि भारत के लिए भी एक गर्व का विषय था। एक भारतीय मूल के उद्योगपति का वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा नाम बनाना सबके लिए प्रेरणादायक था।
1: लेकिन दोस्तों, एलन मित्तल की कहानी सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं है। वे शिक्षा, खेल और सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते रहे। उनका मानना है कि सफलता के साथ साथ समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। तो सबसे पहले उन्हें बेसेमर गोल्ड मेडल मिला 2007 में, फिर उन्हें पद्म विभूषण मिला 2008 में, फिर फोर्ब्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में।
0: बिल्कुल। और अगर हम एलन मित्तल के जीवन से कोई सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं तो वो है कि बड़ा सोचो।
1: इसके साथ ही मेहनत और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
0: तो दोस्तों, एलन मित्तल का जीवन हमें सपने देखने, मेहनत करने और कभी हार ना मानने की प्रेरणा देते हैं।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, बात जब टेबल टेनिस की हो तो चीन और जापान का नाम दिमाग में आता है, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी ऐसी भी है जिन्होंने इस खेल में दुनिया भर में तिरंगा लहरा दिया है। यहाँ बात हो रही है भारत की टेबल टेनिस क्वीन मनिका बत्रा की।
1: 15 जून 1995 को दिल्ली में जन्मी मनिका ने सिर्फ 4 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग के बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकरा कर उन्होंने रैकेट थामा और फिर बस इतिहास गवाह है। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सिंगल्स और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
0: दोस्तों, इनका खेलने का अंदाज सबसे जुदा है। वो अपने रैकेट के एक तरफ लॉन्ग पिम्पल्स रबर का इस्तेमाल करती हैं। मैच के बीच में वो इतनी तेज़ी से रैकेट घुमाती हैं कि सामने वाला चकमा खा जाता है। इसी जादुई खेल की बदौलत वो दुनिया की टॉप 25 प्लेयर्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एशियन कप में ब्रॉन्ज जीता और ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है।
1: इस साल भी निधि जो है इनका जलवा बरकरार है। अहमदाबाद SG पाइपर्स के लिए खेलते हुए और इंटरनेशनल कोर्ट पर चीन के बड़े बड़े चैंपियंस को धूल चटाते हुए उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आने वाले लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में भारत के लिए ऐतिहासिक मेडल जीतना।
0: बिल्कुल हर्षित, और इसी के साथ अब हम बात करते हैं फुटबॉल के एक फेमस पर्सनालिटी की। तो फुटबॉल के मैदान पर गोल दागने वाले स्ट्राइकर्स की तो तारीफ सब करते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गोलकीपर की जो गोल पोस्ट के सामने दीवार नहीं बल्कि जलता हुआ ज्वालामुखी बन जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये है इतिहास के सबसे खतरनाक और महान गोलकीपर ऑलिवर कान।

0: जर्मनी में जन्मे ओलिवर अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते हुए गोल पोस्ट को एक अभेद किला बना दिया करते थे। उनका वो गुस्सा, वो आक्रामकता और डिफेंडर्स पर चिल्लाने का अंदाज़ ओपोनेंट टीम के हौसले पस्त कर देने के लिए काफ़ी होता था। तभी उनके फैंस प्यार से वुल्कानो भी कहते थे।
1: वे इतिहास के सबसे सफल जर्मन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 8 बुंडेसलिंगा खिताब, 6 DFB पोकल और 1996 में UEFA कप, UEFA चैम्पियंस लीग और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते हैं। 2002 फीफा वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के इतिहास में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले एकमात्र गोलकीपर बने।
0: भारत से भी उनका बेहद खास नाता है। साल 2023 में वे मुंबई आए थे तो उन्होंने भारतीय युवाओं को गुरु मंत्र दिया था, नेवर गिव अप। उन्होंने गोल कीपिंग अकेडमी खोलने की प्लानिंग भी की और उसकी बात भी की, क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया में फुटबॉल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और बात की जाए जब बैडमिंटन कोर्ट की, तो बैडमिंटन कोर्ट पर जब भी किसी महिला खिलाड़ी के दहाड़ने की आवाज़ गूंजती थी तो पूरी दुनिया समझ जाती थी कि कोर्ट पर सिर्फ एक ही नाम राज कर रहा है, स्पेन की बैडमिंटन क्वीन कैरोलिना मैरिन, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने एशियन प्लेयर्स के दबदबे को ऐसा तोड़ा कि इतिहास बन गया।
0: दोस्तों, वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि बैडमिंटन की वॉरियर थी। महज 8 साल की उम्र में IAS ला ऑर्डन में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। वे ओलंपिक चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड कप चैंपियन, 8 बार यूरोपियन चैंपियन और वुमेन सिंगल्स में पूर्व विश्व नंबर 1 रह चुकी हैं। उन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था, जिससे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली इकलौती नॉन एशियन वुमेन प्लेयर बनी।
1: 2016 ओलंपिक फाइनल्स में PV सिंधु के साथ उनका वो यादगार मुकाबला कौन ही भूल सकता है अर्शद। जब भी मरीन और सिंधु आमने सामने होती थी तो मैच नहीं बल्कि कोई ऐसा लगता था महायुद्ध हो रहा है।
0: हालांकि हाल ही में मार्च 2026 में इस महान खिलाड़ी ने मेडिकल इश्यूज की वजह से प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन उनकी वो जो आक्रामकता है, वो बाएं हाथ से जादुई क्रिस क्रॉस स्मैश है और उनकी कभी हार न मानने वाला जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले शख्सियत की। दोस्तों, नाम कमाना आसान नहीं होता, लेकिन जो दिलों में जगह बना ले उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। आज हम हिंदी सिनेमा की एक ऐसी महान कलाकार की बात करेंगे जिनकी आवाज़ और अदाकारी ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था।
1: बिल्कुल, और वे हैं सुरैया। वे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों और गायिकाओं में से एक थी।
0: सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत और अभिनय में रुचि थी। उनकी प्रतिभा ने कम उम्र में ही लोगों को जो है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था।
1: और उस दौर में फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ खुद गाना गाना भी एक बड़ी कला मानी जाती थी। सुरैया उन्हीं कलाकारों में से एक थी जो अभिनय और गायन दोनों में माहिर थी। यही बात उन्हें अपने समय के अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता जो है काफ़ी बढ़ने लगी और वे दर्शकों को पसंदीदा कलाकार बन गई। उनकी मुस्कान और अभिनय शैली लोगों को बहुत पसंद आती थी।
1: 1940 और 1950 के दशक में सुरैया का नाम सफलता की पहचान बन गया था। उनकी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते थे। उस समय वे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सितारों में से एक गिनी जाती थी।
0: दोस्तों, सुरैया की सफलता केवल प्रसिद्धि तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने काम के प्रति समर्पण और मेहनत से एक विशेष पहचान बनाई। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है।
1: और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे पास प्रतिभा और मेहनत दोनों हो तो सफलता ज़रूर मिलती है।

0: दोस्तों, अब बात करें हम आज के बर्थडेज की। तो दोस्तों, आज बर्थडे है हॉलीवुड के उस मशहूर एक्ट्रेस का जिसने हमें साफ सफाई से प्यार करना सिखाया। बात हो रही है कॉर्टनी कॉक्स की, जिन्हें हम फ्रेंड्स शो की हमारी सुपर ऑर्गेनाइज्ड शेफ मोनिका गेलर के नाम से भी जानते हैं।
1: 15 जून 1964 को जन्मी कोर्टनी आज पूरे 62 साल की हो गई है, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दोस्तों, वे सिर्फ मोनिका के रूप में नहीं बल्कि फेमस सिर्फ उनके मोनिका के नाम से रूप फेमस नहीं हुई, बल्कि वे हॉरर सिनेमा की भी क्वीन हैं। सुपरहिट फिल्म सीरीज स्क्रीम में भी उनका गेल वेदर्स का रोल भी उतना ही आइकॉनिक है।
0: बिल्कुल। और उनके पुरस्कारों की बात करें तो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, 2 एमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेशन, और साथ ही साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार शामिल है।
1: आज एक और ख़ास पर्सनालिटी का बर्थडे भी है, जो कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। एक्टर, सिंगर, राइटर, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट, कॉमेडियन एंड मैजिशियन भी है। यूएस में जन्मे नील पैट्रिक हैरिस, जो कि खास तौर पर टीवी पर कॉमेडी रोल्स और मंच पर ड्रामेटिक और म्यूजिकल रोल्स के लिए जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल। और टीवी पर वे एबीसी सीरीज डूगी हॉज़र एमडी में मेन रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर टीवी सीरीज फॉर कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ सीबीएस सीरीज हाउ आई मेट योर मदर में बार्नी स्टिंसन के रूप में, जिसके लिए उन्हें 4 एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिले थे।
1: उन्होंने रेंट के नेशनल टूर में मार्क कोहेन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने डेविड ऑबन के प्ले प्रूफ से ब्रॉडवे में पदार्पण भी किया। उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें एक टोनी अवार्ड, 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। साथ ही उन्हें ग्रैमी अवार्ड और 3 एक्टर अवार्ड्स के लिए

0: आर एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिले थे।
1: उन्होंने रेंट के नेशनल टूर में मार्क कोहेन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने डेविड ऑबन के प्ले प्रूफ से ब्रॉडवे में पदार्पण भी किया। उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें एक टोनी अवार्ड, 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। साथ ही उन्हें ग्रैमी अवार्ड और 3 एक्टर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेशन मिला है।

0: दोस्तों अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के सामने खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील और मोरक्को का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। वनडे की चैंपियन भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज भी जीत के साथ किया।
1: और जाते जाते दोस्तों अब हम आपको शेयर मार्केट की भी अपडेट दे देते हैं। तो निफ्टी 50 23,859.45 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 76,264.33 पर बंद हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज आपके साथ मैं थी निधि जैन और मेरे साथ थे
0: हर्षित।
1: अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
3: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र

0: आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

शाम की 6:05 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम शुभ मंगल सावधान।

इश्क का माजरा कुछ ऐसा ही होता है दोनों, जहां सिर्फ राख बचती है, जुनून होता है। अगला नगमा हमने आपके लिए चुना है फिल्म हल्का से, और आवाजें हैं शंकर महादेवन की।

जो फिल्म अभी जिस गाने में आपने सुना वो थी पी से प्यार एफ से फरार, और इसमें जो आवाजें थी वो केवल और मानसी की थी। चलिए अगला नगमा आपके लिए चुना है हम।

0: ने फिल्म मनमर्जियां से। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म का नाम मनमर्जियां और आवाज हर्षदीप कौर और भानु प्रताप सिंह की है।

यनकमा था काशी का और आवाजें थी इया सरदेसाई की। फिल्म का नाम जुदाई, अलका या

0: जुदाई फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:50 पर आपको सुनवाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये सभी कार्यक्रम हम रिले करेंगे जयपुर अजमेर केंद्र से, प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचार रेखा गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावाटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047

0: देश तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचें और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलुम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल है। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-30

0: 32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देश भर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज बाद

0: वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जनसरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मॉनसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मॉनसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

0: उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आज औपचारिक कार्यक्रमा री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। अर प्रदेश माए बच्चा ने 10 तू बचावण अर इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा जसरा शर्माए शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारी मूर्त रो अनावरण कीनो। ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाकारा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला। राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूरवीरां री धरती रही है। वह कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हलका रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दिनो है। राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रोई मान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोपया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसाओं भरिया देश रा तौरों सामने आ रहे है। वे आज जोधपुर माए खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज रे उपलब्धियां रो जिक्र कीनो। शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदा रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताई विकसित देश बनवाओड़ी तेजी बढ़ रियो है। वह कहो कि लाड़ला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है।
2: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ रही, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर रहा, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: 21 जून ने मनाया जावण वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओरुं आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली में खबरनवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो चावेला। वे बतायो कि इन मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो चावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर माए लगाई जा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानून जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावण रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र माए लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि ए शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी। वे एहलकारा ने शिविर

0: में आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीकाओं टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचें और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है, इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई जा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो व जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण री अरज कीनी। गृहमंत्री जवाहर सिंह बेठम भी करौली माई व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। सलुम्बर जिला रा नगर परिषद हल्का माई काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवई हल्का माई मैथुड़ी, झल्लारा की माता सुला, जय समंदरी पीलादर, सेमारी री सड़कड़ी, सराड़ा री चावंड और लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे डंपर री फेंट माए आ जावण रे कारण व्या हादसाओं एक ही परिवार रा 6 जना री मौत वे की। मरण वाला माए 2 महिलावां, 1 लोग और 3 बच्चा शामिल है, जदका एक टावरी घनी जख्मी वेगी, जिनरो बीकानेर रा PBM अस्पताल माए इलाज चाल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा र माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करण वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग कर दियो चियो। वानी पार्थिव देह खास विमान नु जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार वाना श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रदेश में बच्चा ने दस्त लागणों बचावण और दस्त तो मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरों काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चालन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्रों छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम, टेम सर इलाज, साफ सफाई, पीवण रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जावेला। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चा रा स्वास्थ्य उंजुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चा ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहवे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नी मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग में बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
2: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग री ओरों अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक राखी ची। इनरो खास मुद्दो पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका राखी चियो। विभाग री शासन सचिव पूनम बतायो कि मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रा माए तांसागर केंद्र री आगली कार्य योजना, बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी, शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। मौसम, प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला में आज ही कठे कठे आंधी बारिश हुई।

0: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: राम राम अनीता भाई सा, राम राम।
0: और खेती और घर कार्यक्रम सुनवा वाला सब किसान भाई बहना ने भी आपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो भाई कार्यक्रम रो टेम भ्यो और अपना ही ननकू बहन हरजीन सोन जीन मोहन जी ने देखो पेमा बहन ये अनारे घरे मेहमान आया है। भी सब जना भी देखो अपने छुट्टियां भी चल रही है, नदी मास मीनो भी है, सब देव दर्शन करने भी आया है। पर कार्यक्रम में तो देखो सब जना अपने जो ही कार्यक्रम रो टेम भ्यो और सब उपस्थित भी गया है सा।
1: हाँ सा। तो देखो आज चौपाल की बात में आप करेंगे कि खरीफ की जब प्रमुख दलहन फसला है वनारो उत्पादन समय कही है और किस तरह अपने वनाने उपयोग में लेना है सा।
0: हाँ सा, तो कई बताई रहा हो, कई जानकारी करी रहा उनके बारे में।
1: तो देखो अपने जो भारत में हर साल अलग अलग मौसम में अलग अलग फसला उगाई जावे सा। खरीफ के मौसम में भारत में सबों महत्वपूर्ण फसल मौसम है जो सालाना खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबों बड़ो योगदान देवे सा। खरीफ फसला मानसून में मौसम की शुरुआत में बोई जावे है और बारिश खत्म हुए जन टाइम काटी जावे सा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो रामा भाई। और देखो ये जी फसला है ये अपने भारत रे महीने लाखों लोगों रो पेट भरे है। जनी महीने देखो चावल है, कपास है, मक्की है, तिलहन है, ये सब खाद्य सामग्रिया वैश्विक बाजार की आपूर्ति भी करे। खरीफ फसला मानसून रे मौसम में बोई जावा वाली फसला है। जनारी बुआई देखो अबार अणी महीना में जून और जुलाई में वेवे और कटाई की बात कर रहे हैं तो देखो सितंबर उ लेने अक्टूबर महीना में की दी जावे। और अंडी फसला महीने देखो अबार जिस तरह आपा बतायो कि मक्का कपास चावल ही तो है से अंडे लाल लारे देखो गन्नो भी है, मूंगफलिया भी है, सोयाबीन भी है, बाजरी भी है, जवार है, उड़द है, दाला है, मूंग दाल है और हल्दी, ये सब चीजें भी इनमें शामिल है
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सा। ये सब फसला मानसून की बारिश पर निर्भर करें और गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में भी यह अच्छी तरह उगे ऐसा। और यानी जो खरीफ मौसम में भारत में मानसून में फसल उगावा रो मौसम ऐसा। तो यो जून में दक्षिण पश्चिम मानसून में आगमन के साथ शुरू हुए और अक्टूबर के मौसम में वापस जावा के साथ में समाप्त भी हुए ऐसा।
0: बिल्कुल देखो खरीफ शब्द री जटे बात कर रहे हैं हाँ तो जंडो अर्थ है शरद ऋतु री फसल जो वणी मौसम ने दर्शावे जदियाना फसलारी कटाई की दी जावे। मानसून

0: सुन रो, आगमन तो जिस तरह बार आपा बतायो जून महीने वे गयो, बुवाई री अवधि भी देखो जून जुलाई वे गी, विकास री अवधि यानी महीने जुलाई उ सितंबर है, और कटाई री जाहे वह सितंबर उ लेने अक्टूबर महीनो है। और कोई कोई किसान भाई अगर देर उ कटाई करना चाहे, जिस तरह कपास है गन्ना है अनारी, तो भी नवम्बर और दिसंबर महीना में भी कर सके। खरीफ फसला ने बढ़वा रे बातें देखो मना ने उच्च तापमान उच्च आर्द्रता और भरपूर वर्षा री भी जरूरत पड़े सा। और नरी सारी जी फसला है ये पाला में जीवित नहीं रह सके, और अंडे वाते देखो शीतकालीन खेती के वास्ते भी ये अनुपयुक्त रहे वैसा।
1: बिल्कुल सा, तो आप बात करिए देखो दलहन खरीफ फसला, तो अपने जो भारत में अधिकतम अपने शाकाहारी आबादी में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए दाला बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु भी है। कटाई बुवाई और फसल काटवा वाला जो जो है वहीं में देखो अरहर है, तो जिन्हें आप तुअरी दाल का मूंगरी दाल का है, हरी है, अनारे लिए जून और जुलाई उपयोग टाइम है, और अक्टूबर दिसंबर जो है उन्होंने उनारी कटेरो टाइम भी भेजा वैसा।
0: बिल्कुल रामा भाई, और देखो कार्यक्रम में आप अंडे बारे में और भी बातचीत करांगा, लेकिन आपको तो हुना एक राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।

0: तो रमाबाई देखो ये तो सुंदर सो मन भावन आप राजस्थानी गीत हुण्यो
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: जटा पेली आप बात कर रहे खरीफ री जी फसला है दलहना फसला है बनारे उत्पादन रो कई टेम है सा।
1: हाँ सर, तो आप बात कर रहे हैं कि देखो खरीफ फसला जो कृषि व्यापार है

0: खरीफ की कटाई रो मौसम रे में जो कृषि व्यापार कैलेंडर है उनमें सब महत्वपूर्ण अवधियों में एक है। सितंबर अक्टूबर में यदि खरीफ की फसल काटी जावे तो चावल है, कपास है, मक्का है, सोयाबीन है और दालारी सब बड़ी मात्रा के साथ में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश भी करे सा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। और अंडरलाल लारे देखो आपा, अगर मूंगफलिया री अगर बात करा तो या खरीफ री फसल री उपज री व्यापार करवा रहा जी भी अपना किसान पे इच्छुक हुए वे कृषि रे व्यापार ने बढ़ावा रे बाते खरीदार और विक्रेता ने हिदो जोड़वा रे बाते यानी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ज़्यादा लाभ प्राप्त भी कर सके है। अंडरलाल लारे देखो वी ऑनलाइन भी अपनी जो फसल है विने बेच सके या पचे प्रतिस्पर्धी कीमता पे कृषि उत्पाद ऑनलाइन अगर खरीदना चाहे तो वनाने जी भी सत्यापित विक्रेता है वी हुई ही दाणों जुड़ने लागत कम बेवे तो देखो अणियों भी वी खरीद सके है।
0: बिल्कुल सा।
1: और लाल लारे देखो खरीफ फसल रे उत्पादन ने जी कारक जनारे वी प्रभावित करे अगर मंडी बात करा तो देखो सबू पहला मानसून री बात करा दक्षिण पश्चिम मानसून सबू बड़ो जो है अंडो कारक वे हाउ मानसून सामान्य लेने ज्यादा वर्षा और देखो खरीफ री ज्यादा पैदावार रो संकेत देवे अपर्याप्त मानसून वेवे तो देखो पैदावार ने तो कम करे से लाड़लारे खासकर बाजरो है जवार है और दाला है और ई जो है ई सब वर्षा आधारित फसला है सा।
0: बिल्कुल सा। तापमान भी यानी पे बहुत असर करे। देखो खरीफ री फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में तापमान की आवश्यकता है और फसल री वृद्धि अवधि के दौरान असामान्य लू चालवाओं पैदावार कम भी हो सके और खासकर चावल और मक्का री।
1: बिल्कुल। और मिट्टी ना प्रकार की अगर बात करा तो देखो खरीफ री नरी सारी फसला जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी में हाउ तरीका उग सके। कपास जो है वो काली मिट्टी में सबू ज़्यादा हाउ तरीका उगे, चावल जलोड और चिकनी मिट्टी में उगे और मूंगफलिया जो है वी बलू मिट्टी में हाउ बढ़िया वनारी पैदावार वैसा।
0: देखो सर सरकारी सहायता की बात करा तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ ऋतु में पहला घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन्हें आपा MSP का किसान बाजार द्वारा चुनी जाने वाली फसल ने प्रभावित करे और कई फसल के लिए उच्च MSP और आमतौर पर खेती क्षेत्र में वृद्धि की ओर ले जाओ ऐसा।
1: बिल्कुल। और पाणद्री बात करें तो देखो अवसंरचना में खरीफ री फसला जो है वर्षा पे आधारित है लेकिन शुष्क मौसम रे दौरान अगर पूरक पाणद्री बात करें तो देखो अधिकांश फसला की पैदावार में नरोई सारो सुधार भी व्यो है सा।
0: बिल्कुल सा। तो कुल मैंने आप यूँ कह सका कि देखो खरीफ रा मौसम में जो भारत की खाद्य उत्पादन प्रणाली रीढ़ ऐसा और 1 अरब अधिक लोगों का पेट भरवा के लिए चावल लेने वैश्विक कपड़ा उद्योग तक आपूर्ति करवा वाला कपास तक खरीफ फसल भारत में अपनी कृषि और अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता ने गति प्रदान करे सा।
1: बिल्कुल। और देखो बेहतर बीज किस्मा भाव बढ़िया पाणद अवसंरचना और MSP नीतियारे माध्यम सरकारी समर्थन रे कारण पिछला 1 दशक महीने अपने देश महीने खरीफ फसलारो उत्पादन लगातार बढ़तो तको जा रो है। खेती जुड़े तका कणी भी प्रकार व्यक्ति रे बातें चाहे भी किसान भाई वो भी तय कर रहा है कि कई तो उगाणो है। भारतीय कृषि रे बारे में देखो हीकवा वाला जी चाहे छात्र वो चाहे किसान वो वस्तुआरी खरीद करवा वाला व्यवसाय वो खरीफ फसलारी पूरी जो है सूची बना रहे उत्पादन करवा वाला राज्य और मौसमी पैटर्न नु भी सब जान सक रहा है सा।
0: तो देखो अनीता भाई साहब बढ़िया सी जानकारी दी आप और अब आप बोलो तो बढ़िया सो राजस्थानी गीत होना सा।
1: हाँ सा।
2: गली गली आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय।
3: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
4: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखो अनिता भाई, सब बढ़िया। सो राजस्थानी गीत हुई हो, और अभी आप देखो जानकारी आगे भी करावा और किसान भाई ने मौसम भी जानकारी भी देता। तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर आई सूचना के आधार पर आगे वाला दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और हल्का फुल्का बादल छाए रहेगा। हवारी गति 3-8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, दक्षिण पश्चिम में चलेगा। और अब किसान बयान आप सामान्य जानकारी भी देता सर।
1: बिल्कुल। और देखो खेती बाड़ी री अगर बात करें तो देखो मिट्टी री नमी ने बनाए रखा वाते अपने जी किसान भाई है बना ने पंक्तियाँ रे वच में सूखी घास या फसल रे अवशेषारो उपयोग करना चाहे अंडे लाल रे गर्म हवाओं बचाव रे वाते खेता री सीमा है बटे देखो बना ने स्ट्रीमन या जूट जाली लगावनी चाहे सर।
0: बिल्कुल सर। बात करें आप गेहूँ री तो अनाज भंडारण में रखवा लिए अच्छी तरह सफाई करने और अनाज ने अच्छी तरह सुखाई लेना है और कूड़ा कचरा ने जली देना है। यही बच्चा दबाई ने नष्ट करना है। दाना री नमी जो है वह 12% ज़्यादा नहीं रखनी है। और भंडारण री लिए छत है, दीवार है, फर्श है, एक बाग पे मिथाइन 50 EC और 100 बाग पानी में मिलाने छिड़काव करना है। और अगर आप पुरानी बोरियाँ प्रयोग में कर रहे हैं तो एक बाग मेलाथियन और 100 बाग पानी में गोल मिलने 10 मिनट तक बनाने भिगोई ने छाया में होकर रखनी है सर।
1: बिल्कुल। और आवा वाला दना महीने वर्षा की संभावना के कारण देखो किसान भाइयों ने देखो ग्रीष्मकालीन फसला महीने पाना थोड़ी रोक देनी चाहे खेती में देखो सब प्रकार जी भी रासायनिक छिटकावे भी बाद में करना है। मूंगफलिया में और मूंगरी फसला महीने खेतारे अतिरिक्त पानी की निकासी व्यवस्था भी वेणी चाहे परिपक्व जी भी सागा भाजिया वेगी है, भिंडी है, खीरा है, अनारी तोड़ाई भी

0: मिलाई देनी चाहे सा
1: बिल्कुल सा बात करा हम पर टमाटर री।
0: हाँ
1: तो एनी टाइम टमाटर री पौध बढ़ावा के लिए उपयुक्त टाइम है और बीजा ने थायरम और दो ढाई ग्राम प्रति किलो रे हिसाब हूँ अपने उपचार के बाद पौध साला में बुआई करनी है सा।
0: बिल्कुल मूंग री बात करा तो देखो मूंग री फसल रे मैंने पीछ छीरा मोजेक रोग री रोकथाम रे वास्ते डाई मिथ्योएट 30 सीसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे मैंने मिलाई ने और छिड़काव कर देना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा बात करा आप सोयाबीन री। तो सोयाबीन री जो उन्नत किस्म है वह प्रताप सोया 1 है, प्रताप राज सोया 2, NRC 27 और JS 335 है। और उन्होंने अपने जो जंटों लेवा तो वह अपने विश्वसनीय दुकानों अपने खरीदने पचे अपने उपयोग में लेना है सा।
0: बिल्कुल। और कपास की बात करा तो कपास में देखो निरई गुड़ाई कर देनी चाहे। मूंगफलिया की बात करा तो देखो सिंचित मूंगफलिया मैंने बोई रो अबार हो टेम है जून मारे पहला हफ्ता हूँ लेने दूसरा हफ्ता तक मिट्टी की जाँच रे आधार पे अंतिम जुताई मैंने पड़ने प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलाई देनी चाहे। बोई रे टेम पे प्रति हेक्टर देखो 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो जो है यूरिया नाग देनी चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। ग्रीष्मकालीन हरा चारा की बात करा तो देखो गर्मिया मौसम में महीना में अपने देखो हरा चारा की कमी ज़्यादा अपने खल है अणी वास्ते अपने जो हरा चारा वाली जो फसल है जिस तरह ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, अनारी बुआई अपने कर लेनी चाहिए।
0: और बागवानी री बात करना तो देखो भाई फलारे वाते नया बाग लगा वाते गड्ढा री खुदाई कर देनी चाहे वना ने खुला भी छोड़ देना चाहे ताकि हानिकारक जितना भी कीटा है रोगाणु है भी सब खरपतवार बीज भी सब नष्ट हो जावे। और ढांडा चापा री बात करा तो देखो दूध उत्पादन बढ़ावा वास्ते दुधारू पशुओं ने संतुलित आहार जरूर देना चाहे।
1: बिल्कुल सा। तो देखो यहाँ तो बढ़िया जानकारी हुई और अभी होना एक और बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हाँ तो देखो रामा भाई, ये तो सुंदर सो मनभावन राजस्थानी गीत हुणियो। और लारे आगे देखो अपने कार्यक्रम में इन्हें बात करा कि भाई योजना री अपने भारत सरकार द्वारा नरी सारी योजना चलाई जा रही है। और ये सब योजना देखो अपने सब रे वाते से चलाई जा रही है, अणो अपने फायदो लेनो है। और अपने देखो अना योजना ने अगर आप जाना

0: दो जना ने और बतावांगा तो देखो वनारो भी फायदो वेगा सा। अने मैंने एक है देखो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, यो जो अभियान है देखो राजस्थान सरकार द्वारा जल संकट निपटवा वाते शुरू की दो गयो एक बड़ो जन आंदोलन है सा।
1: अणि अभियान में अपने जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा नेतृत्व में हर साल 25 मई गंगा जी गंगा दशहरा 6 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलाए जावे सा।
0: बिल्कुल सही
1: अंदर
0: कह
1: मुख्य
0: रहा हूँ।
1: उद्देश्य है कि जल प्रबंधन रो केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रखने ने जनता रे सहयोग को एक जन आंदोलन बनानो है सा।
0: बिल्कुल, और अंडे जटे आप मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा हो तो देखो भाई यो जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है अंडे महीने देखो जल संरक्षण ने एक जन आंदोलन तो बनानो ही से लारे लारे अंडो उद्देश्य पारंपरिक जटरा भी अपना जल स्त्रोत है जना महीने बावड़िया है जोहड़ है नालिया है और कुआ है अणा ने

0: प्राणी अभियान रे माध्यम देखो जल संग्रहण संरचना रो निर्माण और पुराना जतरा भी जल स्रोत है बनारी जल धारण क्षमता रे महीने बढ़वार करनो है सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और यो अभियान जो है देखो न केवल राज्य री जल समस्या रे समाधान महीने सहायक वेवे बल्कि यो देखो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाया राखवारी दिशा में भी एक बड़ो कदम है सा।
1: तो देखो अनिता भाई सा, या तो बढ़िया जानकारी दी थी और अभी होना एक और बढ़िया सो राजस्थानी गीत सा।
0: हाँ सा।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखो अनीता भाई साहब, बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुई हो और अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ावा और किसान भाई ने जानकारी दा कि जैविक कीट नियंत्रण अपने किस तरह करना है ऐसा।
1: बिल्कुल, जैविक कीट नियंत्रण की अगर बात करें तो देखो पर्यावरण के अनुकूल विधि है, जड़े में हानिकारक कीड़ा ने नष्ट करवाने वास्ते बनारा जी प्राकृतिक शत्रु है, जिस तरह परजीवी वेग्या, शिकारी जीव वेग्या, सूक्ष्म जीवी वेग्या अनार उपयोग करना चाहे अना फसला ने देखो रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों भी अपना किसान भाई वंचाई सके है। अने मैंने जैविक कीट नियंत्रण देखो जी नरई सारा परभक्षी है वनारे बारे में बताओ देखा।
0: बिल्कुल सर, ये ऐसा जीव है जो अन्य कीटा ने खावे है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकेंगे लेडी बीट बीटल जिस तरह हैं, लेविंसिंग हुए हैं, एफिलिट्स और जिन्हें आप माहू का ये छोटा कीट ने खाई ने ख़त्म करे हैं। और परजीवी जो है वे जो जिस तरह नन्नी ततैया अपना अंडा हानिकारक कीटाओं शरीर के अंदर देवे ऐसा।
1: बिल्कुल, और अंडा निकलवारे वास्ते देखो लार्वा मेजबान कीटा ने महीने रा महीने खाई जावे। सूक्ष्म जीवारी बात करा तो देखो बैक्टीरिया जैसा जीबी बेसिलस थुरिंगी एनसीम अनारो उपयोग इलिया ने और कैटरपिलर ने नियंत्रित करवारे वास्ते कीधो जाई सके। वनस्पति करकरी बात करा तो देखो नीम रो तेल रो छिड़काव प्राकृतिक रूप नरई सारा कीटा ने दूर रखवा में भी प्रभावी व्यवस्था।
0: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो रासायनिक कीटनाशक विपरीत ये जो मिट्टी पानी और हवा है वे उन्होंने प्रदूषित भी नहीं कराएं। और कीटा में जो प्रतिरोधक क्षमता अभाव है जिस तरह रासायनिक दवाओं प्रति कीट धीरे धीरे प्रतिरोगी भी जावे, जबकि जैविक एजेंटों के साथ असोनी है सर।
1: बिल्कुल, और अनारे महीने जी है उत्पादित जी भी फसला है बनारे खावा महीने स्वास्थ्य वास्ते हानिकारक अवशेषों भी अपनी फसल जो है मुक्त भी सके है।
0: बिल्कुल सर,
1: और देखो ये तो आप जैविक कीट

0: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗੂ ਰੋਕਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਵਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਮ ਦੇਣੋ ਹੈ। ਔਰ ਲਾੜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਵਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੋ ਇਹ ਖਰੀਕਾ ਵੇਵੇ ਤਾਂ ਵਣਾਰੇ ਲਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣੋ ਹੈ, ਵਣਾਰੇ ਮਨ ਰੀ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਕਲਾ ਬੈਠਣੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਣਾਰੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਮ ਨਿਕਾਲਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋ ਕਿਦੋ ਹੈ ਸਾ।
1: बिल्कुल सर, देखो बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दो ही देशों में मौजूद है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अंडी कई रिपोर्ट आमतौर पर कम ही दर्ज की जाए सा।
0: बिल्कुल, और भी तो देखो परिवार रा मुखिया है, परिवार ने बाड़ू अपनी वार्षिक आय रे लगभग देखो 3% और भीषण गर्मी में 6% और नुकसान भी अगर वेवे, अगर जिस तरह आप बात करा कि भाई पया अगर खर्च वेरिया है और सब्र वाते वेरिया है तो वणा भी कदी अपने वणा रे जीवन रे महीनू पैसा खर्च करने और अपने बड़ो की तो है। तो देखो भाई जदी भी अपने कोई भी घर रा बड़ा बूढ़ा मनक पेवे तो वणा रो मान सम्मान करनो है, कड़ी भी प्रकार रो वणा रे हीन भावना नहीं आनी चाहिए सा।
1: तो देखो यहाँ तो जानकारी भी, और अब देखो घड़ी राणी देखा तो अपने चालवारो भी टाइम वही है
0: तो आप चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। फिल्म का नाम चलते चलते और आवाज़ अभिजीत की है।

क्रिमिनल। इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना कुमार शानू की आवाज़ में। अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं कहो ना प्यार है। इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ है और साथ ही अलका याग्निक भी।

आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। चलिए अगला नगमा हमने आपके लिए चुना है, फिल्म का नाम है लक्ष्य, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: और जोश फिल्म के इस नगमे के साथ ही जिसे अभिजीत ने गाया था। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त करते हैं। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का बुलेटिन, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन

0: में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edil.co.in पर।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो

0: नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर MOU को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to

वो ना होगा तो क्या कमी होगी। ये गज़ल अभी आपने सुनी चंदन दास की आवाज़ में। ख्यातनाम गज़ल गायक चंदन दास की अगली गज़ल पेश नज़र है।

वही हमेशा का आलम है, क्या किया जाए। चंदन दास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर पर, यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 बजे हैं, आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं हर्षित वयार।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना सितार वादन। सितार वादन कर रहे थे हर्षित फयार। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में फिल्म संगीत।

और ये है किशोर कुमार और लता मंगेशकर, हाथ की सफाई। इस फिल्म का नगमा, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और रफी साहब, फिल्म का नाम है हाथ की सफाई।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अभिलाषा फिल्म का ये नगमा। रफी साहब की ही आवाज़ है।

आप सुन रहे हैं फिल्म म्यूजिक का ये प्रोग्राम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का नगमा सुनिएगा किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं फिल्म म्यूज़िक का ये प्रोग्राम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। श्रोताओं, अभी जो आपने नगमा सुना, फिल्म का नाम था स्वीकार किया मैंने, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। अगला नगमा हमने चुना है, फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

और अब जो नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं वो किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है नागिन।

ये नगमा था नागिन फिल्म से और अंतिम सौगात इस कार्यक्रम की आपको सुनवा रहे हैं और वो है फिल्म का नाम आपके दीवाने। किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ें हैं।

और इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले आपको बता दें, जिन फिल्मों के नगमे अभी आपने सुने वो थे अब्दुल्ला, अदालत, बदलते रिश्ते, हाथ की सफाई, अभिलाषा, हम किसी से कम नहीं, स्वीकार किया मैंने, दूसरा आदमी, नागिन और आपके दीवाने हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, रात्रि के 11 बज रहे वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद यानी कि 11:05 पर आपको सुनवाएंगे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।